सतगुरु तेनू छड़ के नहीं ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल अज बचन करना वा तेरे तो ओले कदे ना हो सा मैं किसे भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होवेगा मैं किथे टिकिया होया वा। पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है, तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना हो सा। बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए ते जिदन भाई लैणे नू गुरगद्दी दिती लैणे तो गुरु अंगद बने। पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने की, उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई, उन्हें एक शब्द कहा सी दाता लै गद्दी तां सेवक नू मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा, इन्हों दा प्रसाद पानी। ते गुरु साहब ने जेड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुर प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने, कह लगे सुलखनीए आ गुरु दा दर ऐसे ही एदे दर ते बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामाता होणगियां, ए ते मेरे पुत्र ने इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनगे। उत्थे इक शब्द क्या कहन लगे ए बाबे के होणगे, बाबा श्री चंद ते लखमी दास ए बाबे के होणगे ते जोत जिहड़ी है गुरु अंगद साहब दे कोल होवेगी। उत्थे शब्द कह गुरु घर के जे होए सवाना जिहड़े गुरु दर दे कूकर होणगे तिनको पूजा सगल जहाना, लोग उन्हां दी पूजा करनगे। अज गुरु नानक साहब जी तो जदों जोत भाई लैणे विच टिकन लगी ते विच विचोला कौन बन गया बाबा बुढ़ा जी। पहला तिलक गुरियाई दा भाई लैणा जी नूं बाबा बुढ़ा जी ने लाया, गुरु नानक साहब नूं नमस्कार कीती बाबा बुढ़ा जी ने। फिर साहब ने कहा बुढ़िया मैनू हुण छड के तू नमस्कार गुरु अंगद साहब दे चरणां विच कर। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक साहब तो बाद मत्था टेकिया। भाई लैणा जी नूं गुरु अंगद साहब नूं हुक्म हो गया, क्योंकि गुरु इतिहास नाल तुरेगा बाबे बुढ़े दे, बाबे बुढ़े दे जीवन नूं नाल तुरन लई गुरु इतिहास वाचना पएगा। कहन लगे भाई लैणे नूं गुरु अंगद साहब नूं तुसी हुण करतारपुर टिकना नहीं, तुसी खडूर चले जाओ,

दुखम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी है ध्यान लइए पौ मुकह गुर अमरदास परसी है अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै

परम सम्मान योग युग युग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाही मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने। कल दा दिन जो बतीत होया है, कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलखण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है, इत्थे गुरु दी किरपा ते निर्भर करदा है। सत साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं, शब्द वरतदे ने इह सत्रिया बत्रिया गया है, 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलखणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने दी बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी ओ भी गुरु बन सकदे ने ते कृपा गुरु करे तां 72 साल दा बजुर्ग भी गुरु बन सकदा है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास दी और बाणी दी विचार आपां ने करनी है। जेड़ा अज दा दिन गुरगद्दी पुरब आपां मना रहे हैं, इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने। कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना ओ कहा होया केवल तर्क दी बिरती वाला लगेगा, ते जदों प्रतख गुरु नूं हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास दी कृपा वरसेगी। विचार आरंभण तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है, सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे हुए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए की तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का, ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए कि पिंड बासर के 1479 नू होया। 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरत रहा, अजे वो गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक ये कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल, ते बीबी भानी जी दी शादी उन्हां दा ब्याह उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल, जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने, ते इन्हां दे मन विच एक फुरना उठदा है जिहड़ा मन दा टिकाओ वे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े हां, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथिया है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना, दान पुन करना, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरत्या, खैर तीर्थ इशनान गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने, ते महीनियां बद्दी समा लगदा पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना, ते जाना जाके उत्थे दान पुन भी करना। उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना। ते अज 20वीं वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पे आउंदे ने, ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनूं पिंड मिठड़ा भी कहा जांदा है। इस पिंड दा एक बहुत ही सियाणा विद्वान पंडित है जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहिर है, ते इन्हें अपने घर दे विच एक मानो सरां दा ढंग तरीके नाल मकान बनाया है कि जितने भी यात्री गंगा इशनान करन जाण ते जां गंगा इशनान करके वापस आउंदे होण, उन्हां नूं जल पानी दी सेवा करनी, प्रसाद पानी उन्हां लई तैयार करना, ते रस्ते दी थकावट दूर कर ली। जितने दिन भी कोई रहना चाहे ते उह विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी, ते यात्रियां दा एक सुभा सी कि उहदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्या उहदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो ये बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज ये भी उस पिंड विच पहुंचे ने, उस पंडित विद्वान दे घर अंदर उहदी सरां दे अंदर उन्होंने बड़े आराम दे नाल जाके प्रसाद पानी छकिया। कहन लगे गर्मी दे दिन सन, ते बाबा अमरदास जी उहदे घर तों बाहर निकल के उहदे लवाए हुए बाग दे अंदर जाके टिक गए, ते गर्मी अतदी पैंदी है। बाबा अमरदास उस रुख दी छां थले टिके ने, ते किन्ने इस पंडित दा नाम सी दुर्गो, सार सुत भिंबी गोद दा सी। इह पंडित अपने घर तों बाहर निकलिया, बाग विच पए होए यात्रियां दे कोलों लंघिया, ते ज्योतिष विद्या दा माहिर किन्ने उस वक्त इस पंडित ने ना बाबा अमरदास जी नूं लेटिया देखिया, ते बाबा जी वक्खी परने हो के पए ने, चरणां दीआं दोनों तलियां दिसदीआं पईआं ने। विद्वान पंडित सी, बाबा जी दे चरणां दी तलियां विच उहने पद्म देखिया, ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरणां विच खलो गया। कहन लगा हे मना, मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती, जे इहदे चरणां दे अंदर पद्म है ते इह गल ध्यान विच रखना, जां ते इह आउण वाले समें दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा,
ते जां ए आउन वाले समय दे अंदर अध्यात्म वर्ती बहुत उच्चा महापुरुष होवेगा, कितना समा ओ बाबा जी दे चरणा दे पद्म नू देखदा रिया। बाबा अमरदास जी उठे ते उठ के जदो अगे तुरन लगे ते उस वक्त सोचिया जिस पंडित ने इतनी सेवा कीती है कितना चंगा होवे, जान लग्या मैं कुछ ना कुछ इन्हां नू माया दे दिया। अपनी वांसुली थैली खोली, कुछ कु माया आवाज दे के कहन लगे, पंडित जी तुसी आउन जान वाले यात्री नू विश्राम लई थां देंदे हो ते मैं चाहना कुछ सेवा तुहाडी करां। ते उस वक्त इस दुर्गो पंडित ने हाथ जोड़ के कहा, कहन लगे, बजुर्गा अज नहीं कदी समा आउणा है, मेरी गल याद रखी, जां ता बनेगा बहुत उच्चा भारी सम्राट तू राजा ते जां बनेगा बहुत उच्चा अध्यात्मक वर्ती महापुरुष, मैं तेरे दर ते मंगण आवांगा। अज मैं थैली दे पैसे नहीं लैणे, जितन ए रेखा रेखा फलेगी जितन तेनू भाग लगेगा उदन मैं झोली अड के अपने आप तेरे दर तो मंगण वास्ते आवां। सतगुरु बाबा अमरदास मन विच प्रसन्न भी होए, कहन लगे, पंडित मैं ता कितना समा होया गंगा इशनान करन जाना वा, अजे तक ओदे दीदार नहीं होए, अजे तक मेरे अंदर दा टिकाओ नहीं मैनू मिलिया, ते ए रेखा की करेगी। ते पंडित ने कहा, कदी समा आवेगा ए रेखा भाग जरूर लाएगी, ए चक्कर चिन्ह जेड़े मैं पढ़े ने बिल्कुल सच होणगे। कहिंदे ने बाबा अमरदास वापस पिंड बासर के आउंदे पए ने, जिथों गुरगद्दी वाले पासे नूं आपां अज तुरना है। जदों वापस आउंदे पए ने ते एक ब्रह्मचारी मिले है, इतिहास इहदे बारे खामोश है कि उस ब्रह्मचारी का नाम की सी, इन्हां ते दस दिता जिन्हें पद्म पढ़िया है पद्म देखिया उहदा नाम दुर्गोवे, पर उस ब्रह्मचारी का नाम नहीं पता जिन्हें बाबे अमरदास के नाल कुछ समा संगत की। भाई वीर सिंह लिखते ने, करीब एक महीना ब्रह्मचारी बाबा अमरदास जी दे नाल रहे, तुरदियां तुरदियां सफर मकांदियां ये अपने पिंड बासर के आ गए। ते अज ब्रह्मचारी दी शाम नू जदों जल पानी नाल सेवा बाबा अमरदास करन लगे, ते इस ब्रह्मचारी ने पानी दा गिलास हाथ विच पकड़िया ते इको दम सब तो पहला ए सवाल कीता, बाबा आपां कितने दिनां तो इकट्ठे तुरे आउने आ, तू प्रभु दियां बातां भी बड़ियां करने, तू गंगा मैया दी सिफत दे गीत भी गाने, पर मैनू अजे तक तेरे तो एक गल पुछनी याद नहीं रही, मैनू दसेंगा तेरे गुरु दा नाम की है, केड़ा गुरु वे जिदे चरणा विच टेक के तू दात लईए, केड़ा गुरु वे जिदे मंत्र नू तू जपना है। ते उस वक्त बाबे अमरदास दे पैरां थल्लों जमीन निकल गई, खिरदा कंब उठिया। ब्रह्मचारी कहिंदा, बाबा तू बोलदा नहीं, दस पां सही तेरे गुरु दा नाम की है। ते अखां विच नीर भर के कहन लगे, अजे तक नगुरा हूं, अजे तक मालक वाला नहीं, लभना ते प्यावां पर अजे तक वह मैनू लभ्या नहीं। जदों इन्ने शब्द सुने ते ब्रह्मचारी ने यही गल कही, कहन लगे, हे प्रभु मैनू बचा दई, ए बंदा इशनान भी गंगा दा कर दई, बातां भी तेरे घर दियां करदा है, पर अजे तक गुरु वाला नहीं बनिया, इसो जै नगुरे दी संगत करके मेरा खादा पीता भी परवान नहीं, इस नगुरे दे हाथ दा की खाना। इन्नी गल जान लग्या कह गया अमरदास अपने केसां वल तक, केस तेरे कालियां तो दुध वर्गे सफेद हो गए ने। हुण याद रखी, जवानी तो बाद जिहड़ा बुढ़ेपा है इह केवल मौत दी इंतजार है, बचपन चला गया जवानी चली गई, हुण बुढ़ेपे ने तेरे ते आके प्रभाव पाया, जे अजे तक भी गुरु वाला नहीं

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितने को सूझ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइयै, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अमेओ चुआइयै। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया, पर चेते रखना यह शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द आज भी गुरु के सिखा नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न की प्रेरणा दे रहा है। शब्द असा सुने बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है, इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया, शराब का पेश किया। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं, ते इन्नी टेक के समाधि लाई दी है कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किकर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्ची एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया, ते इहदे चो गिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता, उहदे विच नाली लाईए, ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया, ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी का पोचा फेरिया, ते थल्लो अग बाली, ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब का नशा नहीं, वह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां, ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा, उहदा सरूर, उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है, ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाईए ते उच्चे आचरण नू किकर दे सत बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पक्षी बना दिता इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वो पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चुवाईया एदे विचो अमृत दिया बूंदा डिगदिया एक रस अमेओ चुवाईया कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रस रहा एमस बनी प्रेम में लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रही ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आप कह दईए भी ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मात्र नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पड़ा विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जिहे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारई उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा भी उहनां दा बचन है सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावन सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओ रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे ने इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ने ओ लोग तन नूं तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर से दौड़दा पे पिंडे ते पानी पै रहा है पर मन ते उस पानी का असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुकां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लेंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लेंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ते जे हिंदू है ते चढ़दे नू पानी छड़ के लेंदे नू पानी दे रहा है। ते पंडे कोल आए कह लगे भलिया तू पहली बारी इत्थे आए है? कह लगे हां। फिर किन्नू तेनू पता नहीं पानी चढ़दे नू दईदा लेंदे नू नहीं? सतगुरु बाबा जी कहिंदे ने चढ़दे नू क्यों? कह लगे कुछ तां सूरज नू पानी देंदे ने, कुछ अपने मर चुके पितरां नू पानी पै देंदे ने। बाबा जी कहन लगे पितर किन्नी कु दूर ने? उन्हां ने करोड़ां कोह दी गिनती कीती ते बाबा नानक जी फिर पानी झटन लग पै। ते उन्हां कहा हे बाबा असी तेरे सवाल दा उत्तर दे दिता, तुसी पुछिया असी पानी किन्नू देने आ? असी सूरज ते पितरां नू पानी दे रहे आ ते तुसी पानी किधर दे रहे हो? बाबा नानक जी कहन लगे मेरी धरती है लेंदे नू, जमीन विच फसल बीजीए। ते कई वारी साडे वीर कहिंदे ने बाबा जी ने कहा मेरी करतारपुर जेड़ी खेती सुकदी पई है। नहीं प्यारे अजे करतारपुर शहर बदा भी नहीं सी, करतारपुर ते सब तो अखीर विच बजा। कहन लगे लेंदे नू मेरी धरती विच बीज पिया फसल सुक रही है, मैं चाहना वा पानी चढ़ चढ़ के उस फसल नू भरपूर कर दिया। सारे हस के कहन लगे देखो एनी अकल नहीं, आ गंगा विचो पानी निकल के तेरे पैरा विच फिर परत के रुड़ के वापस आंदा है, एने को दूर पंजाब की धरती ते पानी पहुंचेगा? जा तेरी उस धरती ते जिथे तू फसल बीजी पानी अपड़ जाएगा? बाबा जी कहन लगे पंडा जी मैं ता अज पानी सिंजन आया, आ तुहानू किन्ना कु चिर हो गया पानी चढ़दे नू सिंजने आ? कह लगे ते ता हर साल ही लोकी सिंजदे ने, जदों कोई यात्री आए ते पानी सिंजदा है। साहब कह लगे पंडित जी जे तुहाडा सिंजिया होया पानी करोड़ां को दूर पितरां तक ते सूरी तक पहुंच सकदा है, ओ साडी धरती ते सैकड़े कुआं तेरे कि साडा पानी उस धरती ते नहीं पहुंचेगा? जे तेरा सैकड़े कुआं दूर हजार करोड़ां कुआं दूर ते साडा सैकड़े कुआं दूर नहीं जांदा? लोग हैरान हो गए, कहन लगे अज तक किसी ने सोचे ही नहीं, वाकई जेकर पानी पितरां तक पहुंच जांदा है ते ए पानी इस धरती ते नहीं पहुंच सकदा? ते सारे कोल आ गए, कहन लगे बाबा गल तां तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, पानी पितरां तक पहुंचदा नहीं। ते चेते रखियो पितरां दा असी अर्थ करने आ जेड़े मर चुके प्राणी ने, जेड़े बजुर्ग चढ़ाई कर चुके ने। पर अज बाबा जी ने एक किवाड़ खोलिया उन्हां लोगां दा जेड़े जिउंदे जी तां बापू दे मुंह विच कुट पानी दा नहीं पाया, जिन्हां ने जिउंदे जी मां बाप नूं रोटी नहीं कदी अदब नाल दित्ती ते मरण तो बाद गंगा विच खलो के चढ़दे नूं पानी सट के कहिंदे ने पितरां नूं पानी देने आ। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ने उन्हां लोकां नूं झंझोड़िया। पहली गल इत्थे दो गल्लां ने, एक तीर्थ ते नहाउण वाले ते दूजे पितरां नूं पूजण वाले। आपां भाई साहिब भाई गुरदास जी उन्हां तों पुछिए भी जिहड़े लोक जिउंदे जी मां बाप दा अदब नहीं करदे ते मरण तों बाद पितरां नूं पाणी देंदे ने, भाई गुरदास जी तुहाडे कोल गुरु नानक जी दे घर दी विचारधारा, दसो उन्हां बारे तुहाडा की ख्याल? भाई गुरदास जी दी वार नंबर 37 ते पौड़ी नंबर 12 ते 13 ध्यान रखना। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ऐ मनुख ए माया किन्नी प्रभावशाली है, जिदन तेरा जन्म होया रब दा भाणा उदन वापरिया। वैसे असी भाणा अखर जेड़ा है ना इनू दुखांत नाल जोड़ दिता है, ध्यान देना। असी कई बारी भाणे अखर नूं दुखांत नाल जोड़ने आ, कोई काम बिगड़ जाए, कोई मर जाए, किसे नूं सट लगदा है, असी कहिंदे आ भाणा वापरिया है। मौत होवे ते कहिंदे आ भाणा वापरिया है, ते जदों जन्म होवे ते कोई नहीं जे कहिंदा इन्हां दे घर रब दा भाणा वापरिया है। असल भी जिदन बच्चा जमदा उदन भी भाणा ही वापरदा है। आ इक शब्द हुंदा है आनंद साहिब विच, जां तिस भाणा तां जमिया परिवार भला पाया। कहिंदे जां तिस भाणा तां जमिया, जिदन तेनू रब जी पाया उदन जीव दा जन्म होया। ध्यान रखना कुछ अखर ऐसे ने, जिवें हुण इक अखर जलूस, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੋ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਦਾ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ ਅਕੋਰ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੈ ਉਦਨ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੀ ਟੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ, ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਨੀ ਤੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀਏ। ਤੂੰ ਕਾਮਣ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਚਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ
1: ਸਤਨਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
2: ਨਾਨਕ خوشی پی سچ جیتا سمندر ساگر نیر پڑیا تیتے اوگن خمارے دیا کرو کچھ مہر اپاو ڈوب دے پتھر تارے جیڑا اگن برابر تپے

कर्म मैं कर लेने पर मेरे मालका तू अपने बिरध बाने की लाज रख ता मेरे कर्म कटे जा सकते। इथे एक भगत महापुरुष जिन्हां दे गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन ने, देखो उसने कमाई की, कर्म भावे माड़े सन पहला पर सिमरन करन तो बाद इक सानू मार्ग दस के गए। भगत सदना जी का बचन आंदा गुरु ग्रंथ साहिब विच, उन्हां दा कर्म की सी, कसाई पुणे दा काम करदे सन। जदों रब दी परमात्मा दी भगती वल चले साडा समाज कदी किसे नूं नहीं जे बख्शदा। एक गल ध्यान विच रख के चलियो, गुरु नूं मिलना है रिश्तेदार समाज ते परिवार दा ध्यान रख के चलोगे खुश हो जाणगे। एक कदी भी खुश नहीं जे होने, जे किसे ने खुश करना ते अपने साई नूं आप रिझाइए, जां दुनिया खुश होवेगी ते जां फिर रब खुश होवेगा। एक पासे रहना। बाबा कबीर साहब नूं किसे ने बचन कहे सन, कहन लगे लोग तुहाडी बड़ी निंदिया करदे ने। कहन लगे कौन, कि सारा संसार। कहन लगे जिहड़े निंदिया करदे ने इह किहड़े ब्रह्म ज्ञानी ने, इन्हां ने रब नूं पाले। उन्हां दे दो श्लोक हुंदे ने, कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो, सोचिया सी विद्वान बन जांगा बड़ी चंगी गल है, पढ़बो सो भल जोग, पर मन ने क्या पढ़ाई नालों चंगा जोग दा आखरी अर्थ मिलाप। मैं जानियो पढ़बो भलो, पढ़बो सो भल जोग, भगत ना छाडो राम की भावें निंदो लोग। उन्हां कहा भी जे लोग इन्ना माड़ा कहणगे ते क्योंकि साडा मन थिड़क जांदा है। जदों कोई माड़ी जी गल समाज विच करदा है ना, असीं इक्को दम छलक जाने आ, थिड़क जाने आ। प्यारियो, रब ते भरोसा साईं ते यकीन करके तुरियो, राह उन्हां नूं मिलदे ने जिहड़े अपने सीने गुरु नूं, अपने अंदर गुरु नूं समर्पित करके चलदे। लोगां कहा तेरी निंदिया, कबीर जी दा अगला श्लोक कदी ना भुल्यो। कहन लगे कबीर लोग कै निंदा बपड़ा, की मेरी निंदिया करनगे, जे मन नाही ज्ञान, राम कबीरा रब रहे अवर तजे, सब काम लोग की निंदिया करनगे जिन्हां नूं अब आप रब बारे पता नहीं। कर्म असी माड़े कर बैठे हां मान लो, ते हुण उहनां कर्मां नूं असी पश्चाताप करके कह लईए। पहली गल, केड़े कर्म ने जिहड़े नखिद ने। दो तरह के कर्म ने, एक बिद ने एक नखिद ने। बिद दा अर्थ हुंदा करन जो कम, ते नखिद दा अर्थ है जिहड़े कम नहीं करने। जे गुरमत की बोली भी समझना, रहत दा मरत है, मतलब है बिद कर्म एक करने ने, ते करैत दा अर्थ है नखिद कर्म कदी नहीं करने। भगत सदने ने रब वाले पासे तुरिया, लोकां ने बख्शिया ना, सारिया ने इको गल कही, कल तक कसाई सी अज बन गया वड्डा भगत। गुरमुखो, ये कदी भी भुल्यो ना, परमात्मा की दया किसे वेले किसे घड़ी किसे थां ते कदी भी वापर सकती है। मत समझिए भी जिवें यूनिवर्सिटी विच कोई पढ़द है 18 साल लाए 20 साल लाए तां किते डिग्री मिलेगी, नहीं। हो सकदा है रब मेहर करे तू अज आया, अज मत्था टेकिया, अज ही तेरी झोली विच खैर पै जाए। एक प्रश्न है, किसे सज्जन ने बाहर सवाल किया ते मैनू बहुत चंगा लगा उहदा सवाल। उहदा प्रश्न सी भी कुछ लोग ने जिहड़े आउंदे ने आ के कई कई साल गुरु कोल परमात्मा कोल नाम लैके चले जांदे ने पर अंदर नहीं भेजदे, अंदर नहीं। कुछ ऐसे ने जिहड़े आउंदे ने 2 दिनां दे विच ही अंदर रंग लग जांदा है। मैनूं इक बड़ी सोहणी उदाहरण दित्ती सी, मैं कहा वीर मेरिया 2 तरां दी लकड़ है, एक लकड़ है गिल्ली, एक लकड़ है सुकी। गिल्ली लकड़ नूं अग लावांगे अग जरूर लगेगी पर पहला पानी सड़ेगा। गिल्ली लकड़ नूं अग जरूर लगेगी, अग मचन तो पहला पानी सड़ेगा। हुण एक लकड़ गिल्ली लिया के तू 12 घंटे अग विच रखे, वह 12 घंटिया विच नहीं फूकी जाएगी, नहीं अग छेती लगेगी। सुकी लकड़ तू लियावे ते 10 मिंटां विच भड़क उठेगी, बस इना फर्क ही। कुछ मन ऐसे ने जिहड़े कई जन्मां दीआं वासनावां दा पानी लैके तुरे, सुकणगे ते अग लगेगी, किवें अग मच जाए इक्को दम। एक ऐसे ने जिहड़े वासनावां दा पानी ला के तुरे ने, अंदर पहले ही निर्मल सी, मत्था टेकण दी देर सी, अंदर गुरु गुरु चल पिया। हुण गिल्ली लकड़ सुकी लकड़ दा मुकाबला की करे? जे गिल्ली लकड़े कहे मैनूं इन्ने दिन हो गए, अगले कहणगे दिनां दी गल नहीं, अपना अंदर देख, तेरे अंदर पानी सुका है, सुके अंदर भांबड़ मचेगा। देखो ये नहीं,
ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਸਾਈ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਭਗਤ ਸਦਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਸਾਈ ਲੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਹੈ ਸੋਚ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਕਰਮ ਦਗਦ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛਲਣ ਗਿਆ। ਰੂਪ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਮਥਿਓਲੋਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਾਰਥੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੈ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਤਾਰੀ। ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪਹਿਜ ਸਵਾਰੀ, ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੈ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਤਾਰੀ, ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪਹਿਜ ਸਵਾਰੀ, ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ। ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੱਸ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਸ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਸ ਹੈ। ਜੰਬੁਕ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿੱਦੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਦੀਆਂ ਭਭਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਖਾਏ ਕਰਮ ਖਾਏ ਕਰਮ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾਂ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਸ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਸ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਖ ਹੈ ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨਗਦ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਉਧਾਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਵੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਹ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸੋਗ, ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਨਾਹੇ ਵਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬੇਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾਂ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਸ ਹੈ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਖਾਤਰ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
चात्रिक दुख पावे, एक बूंद कर जल कारने चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले थुन काम न आवे, प्राण जो था के थिर नहीं कैसे बिरमाऊं, डू बूट मुवे नौका मिले कहो काहे चढ़ाऊं, जौंदे मेनू तिनका सहारा दे दे डुबना पिया, ते जिदन मर गया परत के बेड़ियां लियांदियां मैं बेड़ी नू की करना। प्यारियो अगला बचन जिहड़ा कहा सी कहांगे भी हंकार दे बचन कहे, फिर रब नू चैलेंज किया, रब नू मुखातब करके की उनू सामने रोस प्रगट किया, कहन लगे मैं नाही कछ हों नहीं किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा, मैं कुछ नहीं तू किरपा कर मेरे गरीब दी लज्जा रख ले। प्यारियो जेड़े कर्म आपां करने हैं ये भुगतने पैने ने, पर देखो सब तो वड्डा माड़ा कर्म पता है की है, गुरु जी ने अज कह कहन लगे कत्तक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग, सब तो वड्डा माड़ा कर्मी परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रो। अगला बचन है वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, ते जे भुल गयो खिनमै कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, जेड़े भोग भोगना पे ए कौड़े हो जाणगे, पर जे तू रब तो वेमुख ना होवे गुरु दे सन्मुख रहे तेरी झोली विच दात पेगी। गुरमुखो आओ देखो सत्कारयोग भाई साहब उन्हां ने तुसा एक उपराला कीता है बच्चियां नू गुरमत देण दा, बड़ी चंगी बात है। मैं आरंभ विच अर्ज कीती पनीरी खै, जिस माली ने पनीरी सांभ लई बगीचे ओदी सुगंधी देणगे, रब मेहर करे। कबीर जी ने एक बहुत कमाल दा बचन किया, कदी मत समझिए कि बच्चे नू सिर्फ उम्र करके अंदर जिहड़ा आत्मा है पता नहीं किन्ने कु दिनां दा सफर करदा पिया है, साडे सामने उम्र ओदी 7 साल 8 साल 10 साल है, पर अंदर वाला आत्मा तां कई जन्मां दा चलिया है। बच्चा जे किते मां बाप आप किसे संचे विच ढले होण ते बच्चा जरूर ढलेगा। मैं सिर्फ दो तीन उदाहरण देनिया चाहना। कबीर जी ने एक बचन किया है कि जिस तरह बच्चा निर्मलताई बचपन विच लैके तुरदा है, रब मेहर करे बच्चा एक उस रुख की तरह है जिहड़ा धरती विचों निकलदा है, इन्ना कोमल ते लचकीला है जिधर ओनू करांगे आपां रुख ने उसे पासे ढल जाना है झुक जाना है, जिधर बच्चे नू तोरोगे उन्हें उसे पासे तुर पैना है। कबीर जी ने एक बचन कहा कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, वैसे दे भाव अर्थ कुछ होर ने, पेड़ ते दा अर्थ टीकाकारा ने यही कीते ने कि जिवें मानो के रुख कोमल है धरती चो निकलदा जे अखीरले समय तक कोमल रहे ते एदे वर्गा कोई नहीं, पर पेड़ ते दा अखरी अर्थ करांगे मूल के जदों माता दे उदर विच बच्चे दा जे जन्म नहीं होया जेड़ी लिव उथे लगी सी, जे किते ए लिव जन्म तो लैके मौत तक लगी रहे बंदे दी कीमत करोड़ां रतना नाल वी नहीं पाई जा सकती। जैसी उपजी पेड़ ते जिस तरह तू पैदा होए जो तैसी निभ है औड़, हीरा किसका बापड़ा पुजै ना रतन करोड़। पर देखो बच्चे अंदर एक दृढ़ता है, तीन चार उदाहरण ने सिर्फ। प्रहलाद एक बच्चा है, उस बच्चे दे अंदर रब ने मेहर की, कोई बाप दे सामने नहीं सी बोलदा पर प्रहलाद अपने बाप दे सामने खलो के बोलिया, उस बच्चे दी दृढ़ता कैसी सी, उस दा अंदर किन्ना टिकिया सी, परमात्मा भी ओदे भोलेपन उते खुश हो गया, ओदे भरोसे ते मेहर की। ध्रुव की उम्र कितनी सी, ध्रुव बिल्कुल रब लई नहीं तुरिया, जदों बच्चे गुरमत लई तुरदे ने देखो अज इनाम मिलेगा, इन्हां लई बड़ी वड्डी चीज है। ध्रुव जिद्दन तुरिया उन्हें यह नहीं सी पुछया मां मैनू रब किवें मिलेगा, किते नहीं लिखिया रब लई तुरिया, बिल्कुल झूठ है। उन्हें इको गल कही मां माई जिस तखत तो अज मैनू धक्का पिया मेरे प्यो दा तखत किवें मैनू मिलेगा, उन्हें राज मंगिया उन्हें रब नहीं मंगिया। ते भाई गुरुदास ने कहा ध्रुव हसदा कर आया कर प्यार प्यो कुछड़ दिता, बाहो पकड़ उठा लिया मन विच रोस मतरई किता, डड्डो लिका मां पुछे तू सा वाणी है के सरीता, ओदे विच उन्हें एक सवाल किया मां कि सुदम ते राज मिले, उन्हें नहीं कहा रब मिले, किस उदम ते राज मिले शत्रु ते सब होमन मीता,
मां बड़ी सियाणी से उन्हें कहा पुत्र मेरिया राजे दे घर जम्मी आ राजे नाल व्याई आ धक्के तां पए ने मेरी भगती कोई नहीं मेरी भगती हुंदी ते इहदी कुख चो तेनू मे राजे दी गोदी चो तेनू खिचदा क्यों कोई मेरी भगती नहीं देखो इत्थे इहने कहा कि तेरी भगती नहीं मां ने तोरना सी पुत्र तू पुछना किस उद्दम ते राज मिले छत्री ते सब खोवण मीता मां ने को गल के पुत्र परमेश्वर आराधी है जिदू को यह पत पुनीता दो बच्चे तुरे मुदता हो गई ने गुरु ग्रंथ साहब चो आवाज आउंदी जे रब नू पाणा है ते राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरा जैसे एक दृढ़ता है। तीसरी उदाहरण बाबे फरीद दी असी गल करने हैं। मैं पढ़ रहा सा 10 साल तो थोड़ी उम्र सी जिदन बाबे फरीद नू सारी कुरान जबानी कंठ हो गई सी किन्ने कराई मां ने प्यारे मां नू जिदन भगती ली तुरे ने ओ महान महापुरुष सिर्फ इको गल पुछी सी मां भगती दी गल करनी है बच्चा तुरेगा जरूर उनू उत्साहित कीता जाए मैं कहना जेड़े भावे एग्जाम विचो घट भी नंबर लैन उन्हां नू ही उत्साहित करो क्योंकि उन्हां दा उत्साह उन्हां नू अगे वधन वास्ते होर प्रेरणा देगा। उन्हें इको गल कही मां रब रब दीआं गल्लां करनीआं रब की दिंदा है मां नू पता सी अज तरीका बदल गया सन्मान ओही है जिहड़ा कदी फरीद दी मां ने दिता कहन लगी पुत्र खुदा दी भगती करिए ते रब खाण वास्ते मिठा दिंदा है इतिहास गवाह है मिठे दी पोटली नू लैके चलिया एक दिन मां दे सामने खलो कहिंदा मां मेरिए केड़े मिठे दी गल करनी है रब वर्गा मिठा किते भी नहीं बच्चा ही सी ना मिठे लई तुरिया एक राज लई तुरिया ते उन्हां बाणी विच कह दिता शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो माझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद एक बच्चे सी गुरमुखो ओ भी बच्चा सी जिहड़ा दिल्ली दी धरती ते खलोता वंगार के कहिंदा सी मेरी मां झूठ बोलदी है मैं सिख हां मेनू कतल करके बाबा फतेह सिंह दे कोल पहुंचा दियो ओ भी 4 साल दा बच्चा सी जिदा सीना चीर के कलेजा तड़पदा बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मुंह विच तुन दिता ना बच्चे ने चीक मारी ना बापू ने खाई कीती तुहाडा इतिहास है गुरमुखो ओ सरहंद दीआं नीआं ने मैं एक बेनती तुहानू करांगा तुसी भावे तुहानू रब ने सब कुछ दिता इत्थे पैसे की कमी नहीं तुहाडे विचों करोड़ां पति होने ने बच्चे जदों अपने ले जांदे हो ना गर्मी दे दिनां विच कल्ले हिल स्टेशन नहीं कदी गर्मी दे दिनां विच सरहंद दीआं नीआं कोल भी जाके खड़े करिया करो गुरमुखो मैं कहांगा बच्चियां दे ट्रिप बनाओ रात ले जाओ ते कदी ओ समां जदों कोई भी ना होवे उस एकांत विच चौंकड़े मरवा के कहो बेटा आओ देख ठंडा बुरज ओदी रात विच दादी अपनी गोद दा निग पई दिंदी है बच्चियां नूं आ देख नीआं इहदे विच बाबा फतेह सिंह बोलिया सी ते बोल के कहिंदा पिया सी सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से डरता नहीं है अकाल किसी शहन शाह की शान से उपदेश अपला सुन लो जरा दिल के कान से कह रहे हम तुमको खुदा की जुबान से गुरमुखो ओ भी तां देखण विच बच्चे ने पर साडे बाबे ने उस तो अगे चलो बच्चियां नू जे होर प्रेरणा देनी है भावे सारिया सहूलतां ने अपने घरां विच नौकर ने चाकर ने गुरमुखो कदी हरिमंदर साहब जरूर मैं जिथे भी जाना एक होका जरूर देना मेरी बेनती जे सिखो 3 चीजां तो कदी भटक्यो ना अमृत तो अमृत बाणी तो ते अमृत सर तो ये तुहाडे जीवन दा आधार ने अमृत बाणी नाल जुड़ियो ते नाम अमृत दे प्याले खंडे बाटे दे अमृत ना थिड़क्यो ते गुरु रामदास दा दरबार साहिब ना कदी भुल जायो बच्चियां नू ले जाओ तरीका जेख मैं इत्थे बेनती करां भावें बड़े सुख ने तुहाडे कोल पर उत्थे जाके कदी घंटा लंगर दे भांडे मांजो बच्चियां नू लै के तजर्बा करके देखियो मैं कहना प्रैक्टिकल धर्म है कथा कहानियां नहीं ठीक है कथा सुनाती किसी ने 4 प्रमाण वध लाते किसी ने घट लाते गल तो प्रैक्टिकल तौर पर है उदासी महापुरुष इकट्ठे हुए मैं पढ़ रहा एक बुजुर्गां दा जीवन कह लगे आओ सुखमनी साहब दे अर्थ करिए ते बिरध बाबा 85 साल का उन्हू भी लाया बाबा जी अज अर्थ कर लगे हैं अर्थ पहले श्लोक दे ते कर ले
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਪੜੀ ਨਾ ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੂ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮੈਂ ਮਿਟਾਵੂ ਬਾਬਾ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਆਂਦਾ ਚੋਖੇ ਅਰਥ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਸੁਖ ਭਾਲਣਾ ਨਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੂ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮੈਂ ਮਿਟਾਵੂ ਬਸ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਦੂਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਓ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੋ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕਰੀਚ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਖਲੋਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੋ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਕਦੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸੀ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਦਣ ਲੋੜ ਪਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨੀ ਕੱਲਾ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਗਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜਾਉਣ ਲੋਕੀ ਐ ਪਰ ਸੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਥਾ ਦੋ ਥਾਂ ਕਥਾ ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਆਓ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰੀਏ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਦ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ

अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जोगाद सच है सच नानक खुशी पी सच मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझे आ गया अरदास मैं पूर थाऊ नाही जिस पह करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझगी पास ना हो जति सती नहीं पड़या

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए, राखो दास पाठ की लाज।

इंज घूर के ते ना वेख, मार देना है तो दुश्मन वेखदा घूर के, वासना विच ग्रसे होया, लोभी ग्रसे होया, वेखदा इस ढंग नाल। तो जिथे कोई अखां नूं गाड़ देवे, लोचन अपने जो है गढ़ के रख छड़े, उहनूं कहिंदे ने उच्चा लुच्चे दी निंदा। कारण इन्हें जो है अखां गड़िया ने, अखां दे विच नहीं रखिया, अखां नूं गड़े है, बस फर्क इतना है। और अख दस देंदी है, हिरदे विच पुत्रां दी याद है, अखां विच ममता टपकदी है। हिरदे विच पराया धन वसे है, लोभ टपकदा अखां तो। हिरदे विच दुश्मन है, लाली क्रूरता ते घृणा अखां तो टपकदी है, अखां दसदियां ये वेख, इहदे वेखण दा जिहड़ा ढंग है ये कुछ होर है। हिरदे विच मित्र दी याद है, मित्र वसे है, तो खिमा करनी अखां विचों मित्रता टपकदी है। ते हिरदे विच जद गुरु आउंदा है, हिरदे विच जद परमात्मा आउंदा है, तो अखां विच जिहड़ी पवित्रता झलकदी है, जिहड़ी मासूमियत झलकदी है, उहदे ते संसार दी सारी पवित्रता कुर्बान कीती जा सकदी है। कबीर कहिंदे ने सबूत ते मेरे कोल कोई होर नहीं, जे तुसीं आखो, क्योंकि कबीर दावा करदे ने, मैं वेख्या दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा, मैं जिथे तक वेखदा हरी तो बिना नहीं वेखदा, हरी नूं वेखदा। वी चलो मन लैंदे आ, पर सबूत, इसका सबूत की है, तुहानूं हरी दिखाई देंदा, तुसीं हरी नूं वेखदे हो, इहदा सबूत। ते कबीर कहिंदे ने इहदा सबूत सिर्फ मेरी अखां ही ने, होर कोई सबूत नहीं, मेरी अख ही इस गल दा सबूत है। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई, मेरी अखां नूं वेख लो, अगर इहदे च तुहानूं कोई हरी दा रंग दिखाई देंदा है, परमात्मा दा रंग दिखाई देंदा है, तो बस यही सबूत है, होर कोई नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, मैं पेखे होरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा, असी वेख रहे हैं, वो साडी अखां दे च है। इस तरह का पाण प्यारा जब अखां दे समाया होवे ते अखां तो ओझल होवे, प्रेमी तड़प के रह जाता है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने, दृष्ट प्रिय अगोचरे आंधरे ना भय नैन, काहे की प्रेम नी प्रेम हूं लजायो है। अखां तो ओले होया तेरा प्यारा, ते तू अंधी नहीं होई, अजे भी तेरी अखां च जोत है। सुन तो विदेश को संदेश नाए फूटो रिदा, कौन कौन गौन चूक उत्तर ना आयो है। भाई साहब कहिंदे ने, चिट्ठी आई है अजे नहीं आना, ते पढ़ के तेरे प्राण नहीं निकले, तू मरी नहीं, अजे भी जिंदा है। भाई साहब ने इस ढंग का एक दृश्य अपने पावन पवित्र सहीए विच वर्णन किया है कि जो दिल दे समाया है वह नजरां दे समाया है, और नजरां तो ओझल होवेगा, नजरां विच फिर देखण दी समर्था ही नहीं रहेगी, उते नजरां दे विच है, उते नजरां दे थल्ले है, उते नजरां दे समाया होया है। तो मैं अर्ज करा, जिहड़ा राम दे सिंघासण ते बैठदा है, वो दुनिया नूं नजरां दे च रखदा है, नजरां दे च रखदा है, अखां दे च रखदा है, भई मेरी अखां ते। काबल दे तुसीं कोई गल करो ना, भई फलानी गल तू करनी है, कहिंदा मेरी अखां ते। मैं सुन के पहली पहली दफा हैरान होया सी, जद मैं गालबन सन 70 दे च गया सी, 1970 दे च, ते कोई गल मैं कह दिया ना, भई इंज करनी है, तो कहिंदे सन अखां तले। दो चार दिन बाद मेरी गल समझ च आई, भी ये की आखते ने मैनू। पहले तो सुन के मैं चुप कर जाता सी, मैं गल मैनू समझ च नहीं आई, अगों हुण कोई और मैं बोला तो संवाद जुड़ेगा नहीं, बाद च मैनू समझ जाई, बई गल तेरी प्रवान है, सानू कबूल है, जो कुछ तू कहना है सानू कबूल है, बई अखां थले। काबल का यह मुहावरा है, गजनी का यह मुहावरा है, अज भी थानू कनार दे च, जलालाबाद के जिहड़े लोग मिलणगे, इत्थे भी कई मिलणगे, उत्थों दे उहनां नाल कोई गुफ्तगू

0: दे राजनीतक ने सफल हो गए, असि हार गए तो सफल हो गए। उन्होंने तो पाड़ दिता सन, उन्होंने तो इतने अमृतसर के साढ़े दो टुकड़े कर दिते। जो शहीद होए ने, जो जेलों में ने, या जो होर हर तरह के वसायल जुटा के कौम का सम्मान कायम करने की कोशिश पे करते हैं, सबनों एक समझो और जिदे मूंह दे चों पाड़न के बोल समझ निकलन समझ लेना, यह उन्हां राजनीतिकां दे जेर अकर बोल रहे हैं, काबू च आ गए। पाड़न की गल इस वक्त नहीं करनी। मैनू दिल्ली विच भी कई ने कहा गया नहीं जी हम लीडरशिप बदल दई है, चलो मैं खुल के लवट पै दें तुसीं इस ढंग की आवाज उठाओ। मैं कहना नहीं, मैदान जंग विच घोड़े नहीं बदलते। जब लड़ाई शुरू होवे तो आप जो घोड़े ही बदल लो, नहीं हूं तो जिस घोड़े से असवार हाँ उसे ही असवार। मैदान मैदान जंग देश जिहड़ा घोड़े बदलने की कोशिश करता है किमें कमी इस कोशिश में ही हार जाता है और कौम का वह मुंह काला करा बैठता है। इस वक्त मैं अर्ज करा इस ढंग की सोचनी ना सोचना। ये चार राजनीतिक लोगों के सत्ताधारियों के जो है शस्त्र होंगे ने और आदिकाल तो वरतते आए हैं। अंग्रेज भी यही करते रहे, शाम किसी को सर का खिताब दे देंगे सन, राय साहब का खिताब दो, सर का खिताब दो, तो काबू कर लेंगे सन। अगले की शरण पै जाओ, अगले की इतनी महिमा गायन कर लो कि जिहड़ा सर दे खिताब दे नाल भी काबू च नहीं आया। सरदा खिताब दे दिता है, हुक्मां दे दित्ती है, वड्याई कर दित्ती है, महिमा कर दित्ती है, तां भी काबू च नहीं आया। तो हुण कोई जगीर दे दो, कोई प्लाट दे दो, कोई जमीन दे दो, दाम दे दो, पैसे दे दो, अंग्रेजे ही कुछ करते हैं। तो जे दे नाल भी काबू नहीं आया तो जेल च पाओ, तशद्दुद करो इस ते, ते जे अजे भी काबू नहीं आया तो पाड़ो भेद पाओ। ये चार सताधारियों के गुर होंगे ने, हमेशा वरते हैं। सताधारी चाहे उस देश की शक्ति हुकूमत हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, तौर तरीके यही वरते जाते हैं, शाम दाम दंड भेद। और ये चार तौर तरीके साढ़े वरते जा रहे हैं। कई तो खिमा करनी शाम के काबू आ गए हैं, थोड़ी जी उन्होंने उपमा की हुई काबू आ गए। मैं ऐसा देखे कि कुछ काबू हो गए जिन्होंने माड़े मोटे प्लाट मिल गए, कुछ दमड़े मिल गए, तो कुछ एक जेल च कोई तशद्दुद होया, जेल भोगनी पै गई, तो सोचिया हुण छड्डो कि कौम का साथ देना नुकसान होंदा है, कौन जेल दियां पीड़ा सार है, कौन दंड सार है, तो कुछ इस चौथी लपेट विच आ रहे हैं, पाड़ो भेद भेद पाओ, तोड़ो धिरां नूं धिरां नाल तोड़ो, एक नूं दूजे नाल तोड़ो। तो मैं फिर अर्ज करा कि मैदान जंग दे कोई घोड़े बदलने की कोशिश करता है, जिहड़ा भी करता है हार जाता है, जितता नहीं होता, क्योंकि घोड़े बदलने की चीज का समा लग जाता है तो दुश्मन सामने हावी हो जाता है, वो अपने मकसद दे जो है हल हो जाता है। इस वास्ते इन्हों चार ही कुरीतियां के जेर असर तुसी आके अपना मनोबल नहीं गवाना, तो अपना ईमान नहीं बेचना। नर्स करेगा कि जिदे कोल तान है मान उसे कोल है, ते कह रहे है सैयद
1: ओही श्रेष्ठ है जेड़ा निर्मल कर्म दे उते खड़ा है, तो जो निर्मल कर्म ते नहीं खड़ा उते पखंड है, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूट है। तो सतगुरु ने अपने ढंग नाल निर्णय कीता है सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, ते दो पंक्तियां विच निर्णय इस गल दा है कि निर्मल कर्म केड़ा है ते श्रेष्ठ धर्म केड़ा है। ते दो सवाल ने, इन्हों दो सवालों का जवाब एक दिता गया, इन्हू भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते ने प्रश्न अनेक एक जय उत्तर अलंकार मानो तय चित्र। प्रश्न एक होवे, प्रश्न अनेक होवन, जवाब उसका एक होवे, ओनू कहने चित्रा अलंकार। प्रश्न अनेक एक जय उत्तर अलंकार मानो तय चित्र। तो सवाल इथे दो ने, प्रश्न इथे दो ने, निर्मल कर्म केड़ा है ते श्रेष्ठ धर्म केड़ा है, तो प्रश्न दो ने ते जवाब एक है। एक जवाब दे च दोवां सवालां दा समाधान, दोवां सवालां दा जवाब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। इनू साहित्यक दुनिया दे च कहिंदे ने चित्रा अलंकार, अलंकारां नाल साहित्य जो है शोभदा है, तो ये अलंकार है, इनू कहिंदे ने चित्रा अलंकार। प्रश्न दो ने,

ता श्री कृष्ण ने ते बन गए लीला परसोतम ते लीला ते मर्यादा दे सुधार कीता महात्मा बुद्ध ने ते बन गए महात्मा बोध सिद्धार्थ बन गए बुद्ध बुद्धि दे तल ते जी अगां चल के सुधार कीता गोरख ने जो त्रुटियां बोध मजहब दे च भी रह गई सन उन्हां नूं दूर कीता सहजे सहजे एक एक गल दा इस वक्त विस्तार से जिक्र करा चुके समय हो गया मुख्तसरी मैं अर्ज करदा गोरख ने इस ढंग की रौ रीति चलाई और सिद्धि सिद्धियां दे रिधियां दे इस ढंग दे चमत्कारे पेश कीते कि इस देश की आम जनता का कहना कि बड़े बड़े राजे महाराजे भी प्रभावित होने लग गए गोपी चंद वर्गे जोगी बन गए बर्तरी वर्गे जोगी बन गए गोरख की लपेट दे चल गए ते जिथे बड़े बड़े राजे महाराजे आ जान आम प्रजा ते आवे धनवान का धर्म कहने निर्धन का धर्म हो जाता है निर्धन धनवान की नकल करता है निर्गुण गुणवान की नकल करता है तो कुदरती गल है निर्बल बलवान की नकल करता है ऐसा ही होता है। तो जब बड़े बड़े राजे महाराजे जोगी बनने शुरू हो गए तो जोग मत रज के फैलिया इस देश दे जोगियों के नाम के उ कई मठ कई शहर है गोरखपुर यूपी का बहुत व्डा शहर यह गोरख के नाम से नानक मता जिसन अज तुम कहते हो साहबां पावन पवित्र स्थान यह पहले गोरख मता से यह भी मैं अर्ज कर रहा यह गोरख मता से यह गोरख की थां से दिवाली वाले दिन हिमालय पर्वत से ठंड पैण नाल इस मौसम योगी सारे थले आ जाते सन दिवाली तो दो चार दिन पहले ते दीपमाला आउंदी सी जोगियों की आमद विच बे जोगी पहाड़ा नूं छड़ के आ गए बर्फां पैणियां शुरू हो गई योगी आ गए वापस ते मठां विच आ जाते सन गर्मियों विच हिमालय पर्वत चले जाते सन ते सर्दियों विच वापस आ जाते सन इन्हां दी आमद विच दिवाली आउंदी सी दिवाली का त्यौहार जोगियों नाल जुड़े होया दिवाली का त्यौहार बोधियों नाल जुड़े होया सनातनियों नाल जुड़े होया गुरु के सिखां नाल जुड़े होया गुरमत नाल जुड़े है बड़ा एक सांझा त्यौहार है इस वास्ते असीं इस नूं कह सकते हैं कि देश पद्धर का राष्ट्रीय त्यौहार है कौमी त्यौहार है बहुत वड्डा त्यौहार है। मुख्तसर मैं अर्ज करा सहजे सहजे रिद्धि सिद्धि की चमक ढिली पैन लग पई अध्यात्मक सिद्धि है नहीं सी पदार्थ की सिद्धि सी उम्र वड्डी कर लो अचनचेत कोई वस्तुआं प्राप्त कर लो मन थोड़ा एकाग्र होवे ते शक्तियां मिलदियां ने मन पूर्ण तौर ते एकाग्र हो जाए ते परमात्मा मिलता है इन्नी मैं समझदे अगर थोड़ा एकाग्र होया तो परमात्मा दे मार्ग दे जो कुछ है वह मिल जाता है परमात्मा दे मार्ग दे की है रिधियां ते सिद्धियां ते जिहड़ा मार्ग दे बैठ जाए उस राही नूं कोई सियाणा नहीं आखेगा लेकिन मार्ग बड़ा खूबसूरत होवे रस्ते विच जिहड़े स्टेशन आउण वो बड़े पुरौनक होवन ते उत्थे बड़े वड्डे वड्डे बाजार लगे होवन ते जेब विच काफी धन संपदा होवे ते बंदे दा रुकण नूं जी कर जांदा है। परमात्मा दा मार्ग पुरौनक अगर कोई चल पए अगे रिधियां सिद्धियां करामातां पर मार्ग विच कोई रुक जाए वो सियाणा नहीं। इस वास्ते मेरे पातशाह ने कह दिता है सिद्ध होवां सिद्ध लाई रिद्ध आखां आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे भाव मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना मता किधरे ना रिधियां सिद्धियां नूं वेख के तू भुल जाए ते इत्थे रुक जाए नहीं अगे चल मन थोड़ा एकाग्र हुंदा किसे मंत्र दे च रिद्धि सिद्धि मिलदी है अक्सर यह योगी इत्थे रुके इंज कह लो ये मार्ग दे पुजारी सन परमात्मा दे परमात्मा दे नहीं ये रिद्ध सिद्ध दे पुजारी सन ईश्वर दे नहीं। इस वास्ते गुरु नानक नूं जद 22-23 साल की उम्र दे च गुरु नानक देव जी महाराज मिलते ने इन्हां नूं ते योगियों की उम्र कोई 500 साल का कोई 800 वरिया का कोई 1200 साल का भरविटे पैरां तले आते सन कई इन्नी लंबी उम्र दे क्योंकि श्वासां नूं रोक के बैठते सन पूरा साल ते श्वास ही नहीं चलते ते श्वास ही ते पूंजी है ते पूंजी ते खर्च ही नहीं करते सन उम्र वध जांदी सी। गुरु नानक नूं बाला करके बुलांदे सन बच्चा सब सिद्धि मने बिचारिया किवें दर्शन इहो लेवे बाला ए जिहड़ा बच्चा है ते बच्चा करके गुरु नानक नूं बुलांदे सन बाला आओ बाला जी बैठो।

शरीर नु तो लेन नाल मन ते नहीं धोता जांदा। विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभा नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेल में कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे, मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

घर विच वेड़े विच सेन विच निम्म दा दरखत लगाया ते गुआंडी ने पड़ोसी ने आखिया भलिया किसे मिठे फ्रूट दा दरखत लगाण दो नाल छाया मान दो नाल फल खाण दो भला निम्म दा दरखत घर विच लगाण दा की फायदा इंदी डाली इंदी टाणी इंदे पत्ते हर एक चीज विच कुड़कण ते लगाने वाले ने आख्या मैं रोज सवेरे उठ के शायद घोल के इंदिया जड़ा विच पावा और रोज गुड़ ते शक्कर जड़ा पानी इस नूं दिया करांगा उस विच घोलांगा जदों इस नूं बीजन लगा इस दी जड़ दे कोल मिश्री दी दली टिका देना ते जदों एनी मिठास इंदिया जड़ा विच पावांगा कि निम मिठास नहीं देगी इंदिया टाणिया विच्चों मैनू शहद दा रस नहीं आवेगा। पड़ोसी ने आख्या तू बड़ा भोला है ये तेरे हिरदे विच मुगालत है तेरा घोल के पाया होया शहद निम दा सुभाव नहीं बदल सकता उन्दे सुभाव विच कुड़कते नहीं

0: रोज़
1: अमृत सिंचन नाल भी निमदा सहज नहीं जांदा, भाव सुभा नहीं बदलदा। सहज दा अखरी अर्थ सुभा, क्योंकि जेड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेड़ी गल सुभाव च शामिल होवे ओ मनुख सहजे कर लेंदा, ते जेड़ी गल सुभाव च शामिल ना होवे जे ओ करन दी कोशिश भी करे तां ओ करन लगे उसनू उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभा नाल शामिल हुंदे, सहज सुभाए होए सो होए। सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है, कहने निम नू कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नू अमृत तो बाहर पाया गया है ते सुभाव उनके अंदर है। इसी तरह हजूर कहते ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने। तन का कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन उपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए, ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़ है। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, साबण दी जरूरत है। हजूर कहंदे ने

ही सारा विस्तार है, वो एक की है, वो एक व्यक्ति ने एक ऐसी शक्ति है जो ओंकार है। तो ओंकार का मतलब है उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला, नाश करने वाला, इन शब्दों का जोड़ है। अकार उकार मकार भाव ओंकार, यदि वजाहत मैं काफी दफा थोड़े सामने कर चुके हैं, क्योंकि कई दफा मंगला चरण आ जाता है। कह ना सके को तू कद का, थित वार ना जोगी जाने रुत माव ना कोई, जाकर तासर टीको सहजे आपे जाने सोई। साहब कहते सृष्टि भी अनादि, एदा भी याद नहीं लभदा कदों दी है, किसे नु की पता। ते जद कृत बारे नहीं पता ते करते बारे कौन अंदाजा लावे। अनादि सत तो मुराद सती सदीवी हमेशा, अनादि सत तो मुराद पूरन। ते हुण पूरन दे की अर्थ करोगे, पूरन दे अर्थ यही ने जिदा सिलसिला लगे ही ना, कितों शुरू होंदा ते कित्थे खत्म होंदा। कोई न जाने तेरा केता के वड़े चीड़ा, पूरन दा इतना ही मतलब है। पूरन अगर सीमा दे चाहे वह पूरन नहीं है, पूरन जो नाप तोल दे आ गया है वह पूरन नहीं है। पूरन ओ जिदा नहीं पता चलता कितों शुरू होंदा है किथे खत्म होंदा है। ओ जो एक है ओ ओंकार है, और जो ओंकार है ओ सत है। ओ जो सत है ओ गुरु है, ओ एक चूंकि ओंकार है ओ एक सत है, ओ एक ही गुरु है। समूह जगत खंड ब्रह्मंड नो प्रेरणा देने वाला कौन, ओ एक। ऐसे वास्ते कलगीधर पातशाह ने कह दिता, आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमार, अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु मिलिया सोई जी। वो गुरु है। कहिंदे ने सागर दे जद उछाल पैदा होंदा है गर्मी करके तो बदल बनते ने, सारी धरती जिहड़ी खुश्क है इनू हरा भरा करना है सागर नहीं करना है, पर किवें करे सागर बदल बन के करदा है। परमात्मा शब्द बन के करदा है। सागर बदल बनदा है ते बूंदा दे राही बरसदा है ते धरती नू सरसब्ज करदा है। ओ परमात्मा शब्द दी बूंद बनदा है ते बरसदा है ते जीवां दे हिरदे च ज्ञान पैदा हुंदा है। इस वास्ते शब्द परमात्मा रूपी सागर दियां बूंदा ने बदल ने। इस शब्द नू कढ़ दिओ तां गुस्ताखी माफ, गुरु अंगद पाई लैणा ने, गुरु अंगद नहीं ने, शब्द करके गुरु अंगद ने। इस शब्द नू कढ़ दिओ तां गुस्ताखी माफ, निथावियां दी थां निमाणियां दे मान गुरु अमरदास अमरू निथावे ने, गुस्ताखी माफ करते ही है। शब्द नू कढ़ दो ते शब्द करके वह निथावियां दी थां ने, निमाणियां दे मान ने, नेउटियां दी ओट ने। शब्द घर बदलदा रहा, मल्ला पहला मल्ला दूजा मल्ला तीजा मल्ला चौथा, यह घर बदलते रहे ते फिर जुगो जुग अटल घर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आके ओ गुरु विराजमान हो गया, ओ बूंद विराजमान हो गए और समुचे दुनिया नू फैजयाब कर रही है, सरसब्ज कर रही है। ये गल वखरी है कि बरखा तो बंजर जमीना लाभ नहीं उठा सकदियां, पथरेली धरती लाभ नहीं उठा सकती। जैसे कि इकबाल ने कह दिता सी, शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल थी। तो गुरु बदल है पर बदल वास्तविक की है, सागर है। इस वास्ते साहबां दी बाणी कहती, आप नारायण कलाधार जग में परवरे। इतने नारायण है जो शब्द की कला धारण करके जगत दे प्रविष्ट होंदा है, जगत ते बरसदा, जगत दे इंज रोशनी रहिंदा। तो वह जिहड़ा एक है वह सत है, वह जिहड़ा एक है वह ओंकार है, वह जिहड़ा एक है वह सत है,
और वह जड़ा एक है वह गुरु है, चानना देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। और वह जड़ा एक है वह प्रसाद है, दयालु है, दया की मूर्ति। एक तो गल आरंभ होती है मूल मंत्र की, प्रसाद से समाप्ति होती है पूरा मूल मंत्र। मूल मंत्र का पहला अखर एक, अखीरला प्रसाद। वो जो एक है सरबत गुणा का मालिक है, सरबत शक्ति का मालिक है, उसका विशेष ते मूल गुण है प्रसाद, दयालु, बख्शिंद। उदे च कठोरता नहीं है, वो तो सदीव ही बख्शिश करता है। यह गल वखरी, मैं अखां बंद कर लवा तो सूरज की रोशनी नाल मेरा संबंध टुट जाएगा, लेकिन इहदा इह मतलब तो नहीं कि सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, वो तो है, सूरज की रोशनी तो है। इस तरीके नाल मैं पिठ मोड़ के बैठ जावा, मैं उस परम शक्ति नूं भुला के बैठ जावा, उसकी बख्शिश नाल मेरा संबंध टुट जाएगा। बख्शिश तो उसकी है, बख्शिश तो उसकी सदीव ही बरस रही। सतगुर सदा दयाल है भाई, ए नहीं कि सवेरे दया करता तो शामी नहीं, सदा दया करता ते सद बख्शिंद है, सदीव ही जो है बख्शिशा देंदा है। तो वो एक है, वो ओंकार है, वो सत है, वो गुरु है, वो प्रसाद है। ये शब्द का वार का मंगलाचरण है, अगे आप श्रवण करो। हां जी, काव्य रचना जिहड़ी है उन्हूं सलोक आखदे ने। काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे जिहड़े ने दोहरे सलोक और छंद पदे मंगल, ये काव्य शैली है बकायदा। जिवें उर्दू दे च गजल है, नजम है, किता है, रुबाई है, इस तरह गुरबाणी जिहड़ी काव्य शैली है इहदे च सलोक ने, दोहे ने और सवैये ने। बाद विच अपना पूर्ण गुरमत साहित देखिए, उहदे च कवितवी है गए ने, सवैये है ने, छंद ने और तरह तरह के पदे ने। ए गुरु घर की काव्य शैली है। तो यह जिहड़ी अगली काव्य शैली है इसनूं सलोक कहिंदे ने। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज का उच्चारण किया हुआ। हां जी,

उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमानी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी।

प्रथम सिनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नू सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दोई ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होंदा। लोभ दा सुभाव है ते पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहिंदा है, अधूरा ही रहिंदा है। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन ओही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना, तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना, मंगता, तीजा साधन खोना, लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे ए तीन साधन है। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने किरती। जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक, भिखारी। और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार विच ए तिन्ने मौजूद ने। ए ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं है। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खोख है, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राही व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया,
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगनी, मंगना मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, वख वख अवतारा ने जिहड़ी उम्मत पैदा की है उन्हां नूं बकायदा नाम दिते ने, जैसे अहले इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने अपनी उम्मत नूं मुसलमान कहा, महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत जो पैदा की थी उन्हों भिक्षु कहा, गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल जो उम्मत दा जन्म होया उन्हों सिख आख्या गया। सिख ने, भिक्षु ने, मुसलमान ने, सनातन मत हिंदू धर्म दी शाखा एक नहीं है, ये ऐसा दरिया है जो कई धाराओं दे बगदा है। जैसे मैं देखे अमरकंटक दे बिलासपुर मध्य भारत हुण ते खैर प्रांत होर हो गया छत्तीसगढ़, उत्थे तीर्थ है अमरकंटक, धन गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान भी है। नर्मदा अमरकंटक तो निकलती है, जद निकल दिए उत्थे इस दियां 70 धारावां ने, 70 टुकड़े ने, छोटे छोटे अगों जाके इकट्ठे हो जाते, दरिया की शकल अगे चल के बनती है, छोटिया छोटिया धारा। हिंदू धर्म की सनातन मत की धारा एक नहीं है, ये बहुत सारिया धारावां विच बगदा है और अगे जाके कट्ठा भी नहीं आता। सन्यासी ने, बैरागी ने, ब्रह्मचारी ने, इना देच और सन्यासियां दे कई कई रूप, बैरागियां दे कई कई रूप, ब्रह्मचारियां दियां कई कई शाखां, फिर जितने इष्ट ने उतनिया धारावां ने, किसी का इष्ट शिव, किसी का श्री राम, किसी दे श्री कृष्ण, ये धारा मेल भी नहीं खांदी। एक आम मनुख दी ते गल छड़ो, देश ते जगत प्रसिद्ध भगत लेखक विद्वान महात्मा तुलसी जैसे मथुरा दे आए रामायण की कथा करन, तो हुण कुदरती गल है मथुरा नगरी श्री कृष्ण की है, जिवें अयोध्या श्री राम की, जिवें अमृतसर नूं असी रामदासपुरी कहिंदे आ, रामदासपुर नाम भी पहले यही सी। गुरु रामदास जी की नगरी है, अयोध्या राम की नगरी है, बनास शिवां की नगरी है, मथुरा कृष्ण की नगरी है। मथुरा विच आए महात्मा तुलसी तो ले गए श्रद्धालु इन्हां नूं कृष्ण जी दे मंदिर विच, द्वारका दे समंदर विच, सारिया ने डंडौत की, तुलसी ने नहीं की थी। तुलसी ने नहीं की थी। पूछा गया, आप भगत हो, सिर्फ भगत ही नहीं, भगती का संदेश देंदे हो, उपदेश देंदे हो, कथावाचक हो, सिर्फ कथावाचक ही नहीं, तुसी बहुत बड़े विद्वान हो, लिखारी हो, आपने डंडौत नहीं की थी, मत्था नहीं टेकया। तो हुण जो कुछ तुलसी कहिंदे ने उन्हां दा ही बोल मैं तुहाडे सामने रखा। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, बड़ी सुंदर छबी है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ा सोहना प्रभाव पै रहा है।
ਉਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਛਬ ਬਣੀ ਭਲੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨਾਥ, ਪਰ ਤੁਲਸੀ ਮਸਤਕ ਤਉ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਧਨ ਸ਼ਬਾਨ ਹੋਏ ਹਾਥ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਧਨਸ਼ਦਾਨ ਹੋ, ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਧਨਸ਼ਧਾਰੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੁਰਲੀ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਮੁਰਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਭਿਕਸ਼ੂ

0: ताके हर हर कीर्तन नेता। तो मैं अर्ज कर रहा से इको ही उम्मत नो जन्म देता है गुरु नानक ने। सिख सिख केवल सिख है, इको ही उम्मत नो जन्म देता है। मुहम्मद साहब ने मुसलमान केवल मुसलमान, इको ही उम्मत नो जन्म देता है। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु भिक्षु, एक तरह की उम्मत सनातन मत विच नहीं है। कोई आर्या समाजी ने, कोई देव समाजी ने, कोई जो है सनातनी ने, फिर इन्हां दी शाख साधुआं दी अलग अलग शाखावां ने। अगर असल देखना होवे तो जब इन्हां दी शाइयां निकलदियां ने कुंभ दे, उदों पता चलता है कितने फिरके ने। अलग अलग टोल लड़ भी पैंदे, झगड़ा भी हो जाता। इस कुंभ तो पहले कुंभ दे 42 साधु मारे गए सन। नांगे साधुआ की निरंजनी अखाड़े की जंग हो गई सी, लड़ पे। एक ने कहा पहले असी स्नान करना, दूजे ने कहा पहले असी करना। कुंभ लड़ पे, हैरानगी की गल। कुंभ दे दिन पाप धोण वास्ते आए सन, उत्थे ही पाप कर बैठे। 42 बंदे कतल हो गए। जन्मां जन्मांतरां दे पाप धोण आए सन, सब तो वड्डे पाप उत्थे ही कीते, सब तो वड्डे गुनाह उत्थे ही कीते। एक शाखा नहीं है, अनंत धारावां ने। ये ओ दरिया है जो अनंत धारावां विच पहाड़ तो निकलदा, फिर मिलदियां भी नहीं आपस, अलग अलग ही चलदियां। तो मैं अर्ज कर रहा सी मनुख दियां लोड़ां ने, और लोड़ां दे नाल संबंध मनुख तोड़ नहीं सकता। लख यतन करे मैनू नहीं चाहिदा पानी, पर शरीर मंगेगा, लोड़ है। लख मैं उच्ची आवाज नाल आखां मैनू नहीं चाहिदा भोजन, पर शरीर नू भुख लगेगी, मंगेगा। शरीर नू गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, भुख लगती है, प्यास लगती है। कुछ ते वड़ियां वड़ियां शरीर दियां लोड़ां ने, कुछ छोटियां छोटियां होर बथेरियां। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हुंना, लोड़ां दा कोई त्यागी नहीं है, कोई त्यागी नहीं। गल मैनू भुलदी नहीं, 15 दिन मैं कस्तूरबा ग्राम इंदौर विच संत विनोबा भावे दे होंदिया कथा कीती सी। सवेरे मैं इमली साहब गुरुद्वारे च करदा सी, शामी कस्तूरबा ग्राम जो संत विनोबा भावे जी का आश्रम सी। मैनू कहण लगे सानू भी गुरबाणी सुनाओ, मैं कि जरूर सुनावा। मैनू उन्होंने 35-40 किताबा भी अपनिया लिखिया हुई भेटा च दित्तियां। सुभाविक बजुर्ग सन, धन माया मेरे अगों आई। तो चूंकि त्यागी साधुआ का आश्रम सी, परोपकारियों का सेवा भाव, जमीन कट्ठी करके ते गरीबां दे च वंडनी, भूदान, तो ओ माया मैं विनोबा भावे दे झोले च पा दित्ते, एकदम सुट दित्ती मिट्टी। मैं कह इस तरह क्यों इन्ने नफर मिट्टी आई है? मैं कह मिट्टी नू हथ लांदे हो कि नहीं? मिट्टी नाल ते तुहानू हथ भी धोने पैंदे, मैं देखदा। मिट्टी नूं हथ लांदे हो कि नहीं? ते जे धन भी मिट्टी है तो की हर्ज है, की हर्ज है? मैनू कहण लगे मनुखता ने मिट्टी नूं अजे इतनी अहमियत नहीं दित्ती। मिट्टी तो बने हुए कागज नूं, इस करंसी नूं ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋੜਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਥਾਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਗੇਗੀ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋੜਾਂ। ਫਿਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਛੂਤਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੋਂ ਜਾਚੀ ਕਿਸ ਸਾਲ ਆ ਜਾਚਣ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕ ਹੀ ਐਸਾ ਆਇਆ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਤੀ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਿਕਸ਼ੋ ਭਿਕਸ਼ੋ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਮੂਹਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਨੇ ਦੇਣਾ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਮੂਹਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਮੂਹਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੀਣਗੇ। ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤਿਆਗੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਮੂਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਹੈ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਖਿਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਖੱਪਰ ਲਿਆ, ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ, ਜੋ ਮੰਗ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਖੋ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਡਕੈਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਖੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਕਾ ਡਾਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾ ਗਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਵੁੰਚ, ਧਿਆਵਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਦੂਜਾ ਟੋਲਾ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋਗੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਜੈਨੀ ਸਾਧੂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਖੋਟ, ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ, ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ। ਦਸ ਪਰਸੈਂਟ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, 20% ਵੀ ਨਹੀਂ, 100% ਲੁੱਟਣਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣਾ। ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਤੇ ਗਦਾਗਰ ਇਹ ਨਿਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੁਟੇਰਾ ਤਬਕਾ, ਚੋਰ ਤਬਕਾ, ਡਕੈਤ ਤਬਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਤਬਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਤਬਕਾ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਵ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਣ ਮੋਲ ਨਾ ਜਾ, ਮੰਗਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਮੰਗ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਦਿਮਾਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਰਮਣ ਦੇ ਚ ਲੰਘਾਈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਲੰਘਾਈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਚ ਹੱਲ ਪਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਪਏ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, मैं धंधा नहीं छोड़े, ये तो मैं करने आखिरी दम तक कबीर कपड़ा बुन दे रहे हैं, बुन दे रहे। जब चेलिया ने ही कह दिता कबीर नो हुण ते छड़ो, थोड़ी प्रसिद्धि बड़ी हो गई है, चारों पासे लोकी थानू भगत भगत करके पूजते ने, सन्मान देते ने, हुण ते छड़ो। कहन लगे नहीं, हुण ते मेरी किरत भी कीर्ति बन गई है, हुण जद मैं खड्डी चलाना ते खड्डी दी धुन पैदा होंदी है मेरे मन दे चों, प्रभु दी धुन पैदा होंदी। हुण ते कपड़े बुनना सेवा बन गया, मनुखता दी सेवा बन गया, हुण क्यों छोड़ा। पहले मैं सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति वास्ते कपड़ा बुनदा सी, हुण ते कपड़ा बुनना सेवा बन गया, हुण क्यों छोड़ा। आखिरी समय तक कपड़ा बुन दे रहे, नामदेव कपड़िया नू छिम दे रहे। मैं फिर अर्ज करा, मनुख लोड़ां दा त्यागी नहीं हो सकता, लेकिन मनुख लोड़ां दे च नहीं जीवदा, लोभ दे च जीवदा, लोभ दे च। ते लोभ मनुख दे मानसिक सथल नू इतना गिरा देंदी है, प्रभु नाल जुड़ना, प्रभु चिंतन करना, सत्संग दे च बैठना औखा हो जाएगा, कथा कीर्तन सुननी औखी हो जाएगा, ये लोभ नहीं करन देगा। महाराज कहंदे लोभ ते पागल कुत्ता बना देंदा है मनुख नू, ज्यों कूकर हर काया लोभ तावे दै दिस जाए, लोभी जंत न जाने पख अवख सब खाए। लोभ ते पागल कुत्ता बना देंदा है मनुख नू, किसे नू भी नहीं छड़ेगा, पागल कुत्ता जिन्हें पाले है उन्हू भी वड़ेगा, उन्हू भी खाएगा। इस वास्ते तमाम संत जना ने, अवतारियां ने लोभ दे त्याग दागे, लोड़ा दी सीमा है, लोभ दी कोई सीमा नहीं, लोड़ दी ते सीमा है। इहदे उत्ते मैं उदाहरण देना, उन्हां दे के फिर अकरी अर्थ करिए। जैसे भुख दी ते सीमा है, दो रोटियां मैं नहीं खावांगा तो चार खा लेंगा, चलो चार नहीं ते अठ खा लवांगा, सीमा ते है ना, भुख दी सीमा है, स्वाद दी सीमा नहीं है। हुण बंदा सारा दिन खांदा रहेगा, घंटे घंटे च खांदा रहेगा, और अद्धे घंटे च खांदा रहेगा, स्वाद दी सीमा नहीं है, भुख दी सीमा है। लोड़ां दी सीमा है, लोभ दी सीमा नहीं है। लोड़ां मनुख नू नहीं गिरांदियां, लोभ गिरा देंदा है। लोड़ां मनुख नू नहीं भटकांदियां, लोभ भटका देंदा है। लोभ पागल कुत्ता बना के रख देंदा है। इस लोभ दी पूर्ति भी मनुख तीन तरीकियां नाल करदा है, मेहनत करके, मंग के, या लुट के, खो के, लेकिन लोभ दी पूर्ति होंदी नहीं, किरत नाल नहीं होवेगी, किरत नाल लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, मंग के भी नहीं होवेगी, खो के भी नहीं होवेगी। इहदे च मनुख राजी नहीं सकदा, तृप्त नहीं हो सकदा। जिस नुकते नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इत्थे लिया है, वो यह है, तू मनुख है, बाकी भी मनुख ने, कि मनुख हो के मनुख कोल मंगदा, ये तो बहुत हीणी गल है, बहुत हीणी गल। मनुख है, मनुख कोल मंगदा, सारी मनुखता कृत है, करते कोल मंग, जे मंगना ही है, करते कोल मंग, कृत कोल क्यों मंग, तू भी करते दी कृत है, बाकी भी पर करते दी कृत है। उस करते ने वक वक बांडे बनाए ने, बनाए उस एको ही करते ने, किसी ने किसी नू कुछ बनाया, किसी नू कुछ बनाया, किसी नू कुछ बनाया, सारे कृत ने, तू भी कृत है, बाकी भी कृत ने, ते कृत कृत तो मंगे। कविता गायक कवि भी कृत है कविता, कई छंद ने ते एक छंद अपने नू महान बनाना चाहे सुधाई कराना चाहे ते दूजे छंद नू बेनती करे दूजी काव्य शैली नू बेनती करे भी ए छंद जरा तू मैनू ठीक कर दे छंद छंद नू किस तरह ठीक कर सकता है उम्मीद गल पकड़ दे चाहिए शेर शेर नू किस तरह ठीक कर सकता है उर्दू शेर कहते हैं सवैया सवैये नू किस तरह ठीक कर सकता है कवि ठीक कर सकता है कवि करता है वो ठीक कर सकता है कृत कृत कोल मंगे ते कृत कृत कोल सफल होना चाहे ते महान होना चाहे कृत किसे नू महान नहीं बना सकती करता ही महान बनाता है इस शब्द दे कुछ इस तरह दे ख्याल आए ने जो मैं भूमिका दे रूपे थोड़े सामने रखे ने उन अखरी अर्थ सरवण करो एक दफा प्यार नाल आखो सतना श्री वाहेगुरु
1: सोरठ महला पंजवा कार पहला ते तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद
0: राग सोरठ है ते एक ताल दे चे थोड़ा जहा मैनू संगीत दा बोध है यका एक ताल तीन ताल चौताल ये मात्रा आदियां ने ताल आदि ने किस ताल दे गायन करना गजब की गल इतनी सख्ती सतगुर ने उपर रखी है ये राग ते फिर इस ताल दे गाना है ये नहीं कोई एक ही दफा लिख दिता है सोरठ हूं सुर राग दे जितने शब्द आने सब ते सुर लिखी जाने बार बार लिखी जाने बार बार लिखे जाते हैं मता किसी होर राग च गाओ इस गाओ बार बार लिखे जाते बार बार लिखे धनासरी के शब्द आन गए बार बार धनासरी च लिखे धनासरी मल्ला पंजवा धनासरी मल्ला पंजवा महाराज एक दफा उपर लिख दिता ठीक है धनासरी गल खत्म बार बार क्यों लिखे जाते इस वास्ते किधर एको ही शब्द धनासरी च गाउन से बाकी ना गाने सारे बनासरी च गाने ये सारे ही सोरठ के गाने कौन गाँदा सोरठ ते कौन गाँदा धनासरी दो सुरां दा राग रह गया स्रोत बड़ी नीवी हो गई है उच्चारण ते गायन बड़ा नीवा हो गया कुछ भी नहीं रह गया कौन गुरबाणी दी विचार सुनदा है मैं अर्ज करा होके किसे कहानियां जो ना इतिहास ने ना मिथिहास ने ना सच ने क्यों स्रोत नीवी हो गई अर्थशास्त्र का यह नियम है जिड़ी चीज मनुखा की लोड़ आती है मार्केट च उही आ जाती है आ जाती जिस चीज की खरीदारी बहुत ज्यादा हो बस वो मार्केट बहुत आ जाती हूं जावे बंदा जौरी बाजार आखे मूलियां चाहदियां गाजर चाहदियां ने तो जौहरी बाजार दे भी मूलियां गाजर वाले बैठ जाएंगे मैं देखे जौहरी बाजार जयपुर का हीरे मोतियां दी दुकाना दे अगों गाजर मूलियां बेचण वाले बैठे ने उत्थे मैनू ख्याल मिले हद हो गई बाजार जौहरी बाजार बड़ा सुंदर बाजार अदकी साड़ी रिहायश भी उत्थे सी हर साल तीन दिन का बहुत वड्डा समागम हुंदा उत्थों करके आया जयपुर आगरे तो जौहरी बाजार सिंह साहब भी गए सन उठे यानी हरचरण सिंह जी जौहरी बाजार विच मूलियां पईयां विकन गाजरां पै बैंगन पै विकन मैं कहा दो गई इतनी जौहरी बाजार है सारिया दुकाना हीरे जवाहरात दियां अगे फुटपाथ पे मूलियां पईयां बिकदियां ने हीरे जवाहरात दी दुकान इतनी कोई एक एक बंदा किसी च एक भी नहीं सी वह भीड़ सी गाजर मूलियां थे उत्थे ही भीड़ सी पालक ते साग ते भीड़ सी बैंगणा ते भीड़ सी स्रोत नीवी हो जाए वक्तव नीवा हो जाता है स्रोत नीवी हो जाए गायन नीवा हो जाता है इस समय सिख समाज की स्रोत गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना बहुत नीवी हो गई दो सुरां दा राग रह गया गुरमत संगीत खो गए खो गए बड़ी सख्ती दे नाल हर शब्द ते सोरठ मल्ला पंजवा सोरठ मल्ला पंजवा सोरठ मल्ला पंजवा मत एक शब्द सोरठ च गाओ बाकी ना गाओ सारे गाने ने सबनों सोरठ दे च गाने श्री राग मल्ला पहला श्री राग मल्ला पहला श्री राग मल्ला पहला मत किधरे एक शब्द नु तुसी श्री राग च गाओ सारे नु गाना बार बार लिखे फिर सिर्फ इतना ही नहीं लिखिया राग ताल भी लिख दिता है यह तीन ताल च गाना है एक ताल च गाना है इतने मात्रा का राग है यह भी लिख दिता है कौन परवाह करता है कौन ध्यान दे कौन इस पासे जावे खैर मुख्तसर में अर्ज करा राग सोरठ है एक ताल दे सतगुरां ने इसकी बंदिश बनाई है ओहंकार ब्रह्मंड की ध्वनि है और एको यही ध्वनि है वो सत स्वरूप है उसे तो सारा ज्ञान आउंदा है गुरु है और उसका स्वभाव है करुणा दया प्रसाद एक ओंकार सतगुर प्रसाद सरवन करोणक
1: किस हों जाची किस आराधे जहां सबको कीता हो सी
0: ए प्रभु मैं किस कोल मंगा किस दे अगों हाथ फैलावा सारी ते कृत है तेरी बनाई हुई कृत है कृत कोल मैं क्यों मंगा क्यों मंगा ते सारी कृत है कलगीधर पातशाह कहंदे ने केवल काल ही करता बिन करतार न किरतम मानो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बिन करतार न किरतम मानो कृत नु कृत करके जानो करता करके नहीं करतार नु करता जानो जिन्हें करता बनाया है उस नाल जुड़ो करीबन करीबन कृत दे पुजारी और बदकिस्मती अपनी कृत दे पुजारी अपने हथां नाल कबर बनाइए चदरां पे चढ़ा दे मथा पे टेक दे अपने हाथ नाल तस्वीर बनाई है मथा टेकी जा रहे पूजी जा रहे अपनी कृत परमात्मा की कृत भी नहीं अपनी कृत न पूजी जा रहे महाराज इतने कहते ने प्रभु सब कुछ तेरा बनाया है सब कुछ तेरी कृत है ते मैं कृत कोल क्यों मंगा किस हो जाची किस साल आई केदी मैं उपमा करा केदे अगो मंगा जा सब को कीता हो सी जा सब कुछ तेरा कीता होया तेरी कृत है हां जी
1: जो जो दिसा वड्डा वडेरा सो सोखा कोरल सी
0: भावें बहुत वड्डा दिखाई दे रहा है धन बहुत ज्यादा है भावें बहुत वड्डा दिखाई दे रहा है गुण बहुत ज्यादा है भावें बहुत वड्डा दिखाई दे रहा है कला बहुत ज्यादा है कलाकार है सब कृत है सारी कला तैथों आउंदी है तू सर्व कला का गया था सारी कला तैथों आउंदी है सारा रंग तैथों आंदा है सारा रूप तैथों आंदा है सारा धन तैथों आंदा है सारे पदार्थ तैथों आंदे ने सब तेरी कृत है ये जो वड़े वड़े मनुख दिखाई दे रहे ने मैं इन्हां कोल भी नहीं मंगदा इन्हां ने भी एक दिन खाक हो जाना मैं भी खाक हो जाना क्यों मंगा जो जो दीसे वड़ा वडेरा सो सो खाको रुलस ये भी एक दिन खाक दे खाक होंगे मिट्टी च मिट्टी होंगे
1: निर्भव निरंकार भव खंडन साफ सुख नाम निध देसी
0: वो जो आकार तो रहत है ते करता है जिस देच भय नहीं है उही सारियां सिद्धियां दा दाता है उही सारे खजानां दा दाता है इस वास्ते सुखमनी साहब दे ते ऐलानिया गुरु अर्जन देव जी ने कह दिता मौनक की टेक बिरथी सबजा जिंदगी नू व्यर्थ करना है तो टेक मनुख नू बना ले टेक गुरु ते बनदी नहीं प्रभु ते बनदी नहीं उहदे अगों तो लोकी प्रार्थना करदे ने कोई किसे डेरे धक्के खा रहा है कोई किसे धक्के खा रहा है कोई किधर है कोई किसे कोल फरियाद पिया करता है कोई किसे कोल फरियाद पिया करता है खाली पता नहीं कितने आए मैनू कह ले गए ज्ञानी जी साडा ए दुखदा है साडा ए दुखदा है साडा ए दुखदा है ते मैं कह जरा हुण सुन लो मेरी भी गल मेरे गोडे दुखदे ने मैनू भी तकलीफ है ते मैनू कुछ दसो तुसीं ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ, ਨੌ ਦਿਨ ਲਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ।
0: ਹੇ ਹਰੀ, ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਗਾ, ਸੀਮਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਉਹ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਗਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਦੇਂਦਿਆਂ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਪੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ, ਰੱਜ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕਦਾ।
1: ਮਾਣਸ ਬਪੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਆ ਕਿਸਕਾ ਮੋਹ ਤਾਜਾ।
0: ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਆਖਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਕਰਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਜਾਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਰਹਾ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ, ਕਿਸ ਕੀ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈ।
0: ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਲੋਭੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਰਦਾ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਲੋਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਆ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਕਬਹੀ ਜਾਏ।
0: ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਉਸਨੇ ਚੌਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਤਨਾ ਜਪੀਏ ਜਿਤਨਾ ਵੰਡੀਏ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਘਾਟ। ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਪਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਾਂਦਿਆਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਜਾਵੇਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਦੌਲਤ ਸਰਮਾਇਆ ਈ ਮਾਂ ਬਵਦ, ਹਰ ਗਦਾ ਅਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਓ ਸੁਲਤਾਨ ਬਵਦ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਗਤਾਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੌਲਤ ਸਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮ ਬਵਦ, ਹਰ ਗਦਾ ਅਜ਼ ਯਾਦ ਓ ਸੁਲਤਾਨ ਬਵਦ। फिर कहंदे ने घर बजुर्गी बाए दत कुन बंदगी वरना आखर में कशी शर्मंदगी। तू बजुर्ग होना चाहना है, रजना चाहना है, महान होना चाहना है, बंदगी कर त्रिपत हो जाएगा, नहीं तो सारी जिंदगी मंगता ही रहेगा, भिखारी रहेगा, जीवन भर मंगता रहेगा, अंदर ख्वाहिशा चल दिया रहनगिया, तेन चैन जो है नहीं लैन देनगिया। कहते ने भाई साहब भाई नंद लाल दे शरीक जद आनंदपुर साहब पहुंचे ना, उन्होंने दुख बड़ा होया। मुल्तान तो आए सन, नंद लाल पांडे पै मांजते सन लंगर दे। ते शायद आपनू पता होवे नंद लाल बहादुर शाह दे अतालीक सन, औरंगजेब दे लड़के दे जो लड़के सन औरंगजेब दे पोतरिया नू पढ़ांदे सन, अतालीक सन, शहनशाहां दे बच्चे, नवाबां दे बच्चे, जागीरदारां दे बच्चे वो पढ़दे सन। उस वक्त दे बहुत वड्डे अतालीक सन, फारसी उर्दू विच अतालीक कहंदे ने पढ़ाण वाले ने ट्विटर नू, अतालीक सन। एक दिन किधरे कुरान दी आयतां दे इस ढंग नाल अर्थ कीते, अजे शहनशाहियत औरंगजेब दी चल रही सी, पोतरे भी उस दे सन, ते बहादुर शाह नू अजे गद्दी नहीं मिली सी, ए ते बाद च गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी मदद नाल मिले। जद कन्ना विच ओ अर्थ पै गए, औरंगजेब ने मुराद नू कह दिता, ऐसा रोशन जमीर बंदा, ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए। बस इन्नी गल कह इशारा कर दिता। अद्धी रात दे वक्त मुराद आया, नंद लाल दे कोल सुते भाई साहब नू जगाया, आख्या मेरा घोड़ा ले लो, नस जाओ, बच जाओ, निकल जाओ, क्यों थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है, थोड़ी रोशन जमीर खतरे दे च है, थोड़ा ईमान खतरे दे च है, तुसी मेरे मित्र हो, मैं मित्रता निभाण दे नाते आया, ये मेरा घोड़ा लो, इस ते बैठो ते दौड़ जाओ, भज जाओ। नंद लाल कहंदे ने मित्रा किथे भज जावां, सारे भारत दे ते राज इस दा ही है, जिथे जावांगा पकड़ा जावांगा, किथे भज जावां, सारी जगह ते इसे दा हुक्म चलदा है। मुराद ने कहा एक थां ऐसी है जिथे औरंगजेब दा हुक्म नहीं चलदा, धन गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म चलदा है। ओ केड़ी थां है, ओ केड़ी जगह है, ओ आनंदपुर साहब है, उथे बज जा। रात नू सफर करदे सन, दिन नू किधरे छुप जांदे सन, मंजिल दर मंजिल तय करके पहुंचे, सतगुरु दे दरबार विच हाजरी भरी, मत्था टेकिया, ते कहन लगे महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे ही रहना, हुण मेरा दर घर यही है, मेरा सहारा तुसी हो, इत्थे ही रहना है। हां महाराज मैं इत्थे रहना, खुशी नाल रहो। तीन चार दिन तो बाद भाई साहब सतगुरु नू कहन लगे महाराज जद मैं इत्थे रहना है ते आपने रख लिया ते कोई सेवा बख्श दो मैनू। ते सतगुरु कहन लगे की कर सकदा है तू, तैनू की आउंदा पहले दस। महाराज मैं रोशन दिमाग हाँ, मैं रोशन जमीर हाँ, मेरी कलम चो नगमे निकलते ने, मेरे दिमाग तो रब्बी संगीत ते रब्बी गीत निकलते ने, फिलसफा निकलता है, ज्ञान निकलता है, विचार निकलते ने, मैं चिंतक हाँ, मैं अजीम शायर हाँ, मैं कलम दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ, जबान दा धनी हाँ, रोशन जमीर हाँ, ऐसा मैनू सारे कहंदे ने। सतगुरु कहन लगे तू रोशन जमीर है, हां रोशन जमीर, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ਧਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ। ਕੰਜਨ ਦਿਲ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਅੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਅਤਾਲੀਕ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋ, ਕਦੀ ਮਾਂਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਦੀਵਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਤਾਲੀਕ ਬਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਮਾਂਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਰਤੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਕ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ ਗਿਆ ਮਿਟਦਾ ਗਿਆ ਮਿਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਮਨ ਮਾਂਜਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀ ਰੰਗ ਰਤਣਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬੰਦਾ, ਨਵਾਬ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰੀਕ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਸ਼ਰੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮਾਂਜਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਦ ਨਸੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਸੀਹਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਗੋਹੀ, ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਸੀਹਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਗੋਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਵਾਬ ਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਸੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਨੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਦੀਆਂ। ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੁਰਾ ਮੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇਸ, ਹਵਾਏ ਸਲਤਨਤੋ ਵਾ ਜ਼ੌਕੇ ਕਜ ਕੁਲਾਹੀ ਨੇਸ। ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੂਆ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ। ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੋਰਾ तेरी गली का जोड़ा मंगता है वो भी बादशाह बन जाता है, तेरी जी गली का जोड़ा भिखारी है वह भी शहनशाहां का शहनशाह बन जाता है। गदा है, गदा कहते रहे भिखारी ना, कुए कहते गली ना, गदाए कुए तोरा मेले बादशाही नेस, हवाए सल्तनत वा जौके कज को लाही नेस, ए मेरे पादशाह भुल के कोई मंगता थोड़ी गली चो लंघ जाए, दो जहाना दी बाहत शाहत नु ठुकरा देंदा है, इतना माला माल हो जाता है ते महाराज फिर मैनू की कवी है, मैं ते दर मल के बैठा है, मैं ते इस जगह बैठा है। कहिंदे ने कृत कोल की मंगना, करते कोल मंगना, कृत कोल मंगता है जन्म तो लैके मरण तक मंगता ही बनिया रहेगा, करते कोल मंगदा है बादशाहां दा बादशाह बन जाएगा, शहनशाहां दा शहनशाह हो जाएगा। और कितना ही जगत नूं समझाओ कि गुरु कोल नहीं मंगदे, बंदियां कोल ही मंगदे, कि परमात्मा अगों प्रार्थना नहीं करदे, अपने दुखां दे निवृत्ति दी इधर उधर रोला पाते ने, और जेड़े आप दुखी होंगे ने उन्होंने अगों जो है फरियादा करते हैं, जोदड़िया करते हैं। सतगुरु देव जी महाराज इतने फरमान पे करते हैं, हे प्रभु तेरे कोल जे मंगी है तेरी दात दे नाल ही रजेवा, उंज रजेवा नहीं है। हाँ जी,
1: आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई,
0: जी प्रभु तेरी दात रजा दें दिए, महान बना दें दिए, शहनशाहां दा शहनशाह बढ़ा दें दिए, तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है, नौनिध नाम की प्राप्ति हो जाती है, खेड़ा ते खुशी मुयसर हो जाती है, लोभ अंदर दा शांत हो जाता है, मिट जाता है। हाँ जी,
1: मन नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी,
0: हे मन तां ते तू अन दिन नाम जप, नाम दे जो है ध्यान जोड़, दिन रात नाम ही जप, नाम ही जप, ना मंग मनुख कोल। हां जी,
1: उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी,
0: संत जनां दा उपदेश सुन, गुरु पीर पैगंबरां दी बाणी सुन, ताकि जमां दी मुथाजी लोकां दी मुथाजी तेरी मिट जाए, बंदियां कोल मंगना तेरा मिट जाए। हां जी,
1: जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी,
0: रहमत हो जाती है, कृपा हो जाती है, पुरबले संजोग आते ने, वो प्रभु फिर तेरी बाणी नाल ही जुड़ते ने, तेरे को ही मंगते ने। हां जी,
1: कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्व जियां दयाल,
0: हे प्रभु जो तेरी दात है उदी की कीमत, वो सीमा दे च नहीं है, तेरा दिता होया सीमा दे च नहीं है, असीम है, असीम है। मैं ऐसा देखे अगर कोई अनुभवी कवि है तो वह भी कह देंदा है कविता का अंत नहीं है, असीम है, असीम है, संगीत का अंत नहीं है, असीम है, असीम है, ज्ञान का अंत नहीं है, असीम है, अजीम है, ते हे परिपूर्ण परमात्मा पदार्थां का भी कोई अंत नहीं है, असीम ने, असीम ने, तू असीम है, तेरिया दातां भी असीम ने, हे परिपूर्ण परमात्मा कौन कीमत पावे, कौन नापे, कौन तोले, तू मनुख नूं महान बना देंदा है, क्योंकि तेरी दातां असीम ने, जिन्हां दा कोई मुल नहीं, कोई कीमत नहीं। हां जी,
1: सब किछ कीता तेरा वरता क्या हम बाल गोपाला,
0: हे परिपूर्ण परमात्मा सब कुछ तेरी कृत है, असी ते तेरे बच्चे हां, तू साडा पालनहारा है, पिता दी तरह है, असी तेरे बारक हां। हां जी,
1: राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत कृपाला,
0: आए लख गलतियां करदा है बच्चा प्यो फिर भी कठोर नहीं आंदा, दया दे घर विच आके बच्चे नू गल नाल लांदा, सारियां दातां जो है देना है, हे प्रभु तेरे बच्चे आ सदीवी गल नाल राई रख, इस तरह साडी पालना कर जिवें शरीरक पिता अपने बच्चे की देख रेख करदा है, हे प्रभु हर वक्त अपने चरणा नाल जोड़ी रख, हर वक्त अपना प्यार बख्शी रख, ताकि असी हर वक्त तेरे नाल जुड़े रहिए, इतनी सेवा प्रवान। काफी समय हो गया, बाकी विचारा कल। दूसरी बेनती है, कल की कथा तो बाद दोपहर का दीवान हमेशा बाबा दर्शन सिंह जी का डेरा घनोपुर का लै, जिन्हां नाल दास दा बड़ा पुराना प्यार से, 30-35 साल तो बड़ा पुराना प्यार चलता आया। बड़िया खेडा मैं उन्हां दे नाल देखिया, उन्हां कोल देखिया बड़े अनुभव। तो हुण उन्हां दी थां ते बाबा गुरदेव सिंह जी ने 2 बजे तो लैके 6 बजे तक का दीवान कल का कन्नूपुर काले सजेगा। दास के नाल जिहड़ी 3-4 जथे आए हुए ने, प्रचारक आए हुए ने, कवि सज्जन ने, ये सारे उत्थे हाजरी भरणगे। तो दास भी 4 to 5 उत्थे कथा जो है करेगा। सारी संगतां लई 2 बजे तो ही गुरु का लंगर चलता रहेगा 6-7 बजे तक। तो जिन्हां जिन्हां संगतां ने जाना है, जिन्हां कोल समा, वैसे कल इतवार है, तो बाबा जी की तरफों गड्डियां भी ते सरां दे बाहर आ जाणगियां। जिन्हां ने जाना है वो गड्डियां लै जाणगियां ते वापस भी ले आणगियां। हुण जिन्हां दा शौक होवे वो 2 बजे इत्थे पहुंचण की कृपालता करन, बाबा जी दे ट्रक गड्डियां ते कारां बसां आ जाणगियां, वो संगतां नूं डेरे लै जाणगियां ते वापस लै आणगियां। इतना प्रोग्राम आप नोट कर लेना। फुल सुख दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਨੁੱਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ ਅਨਕ ਸਾਜ ਸਿਗਾਰ ਵਾਹੁ ਕਰਤਾ ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਓਢਾਇਆ ਮਾਨੁੱਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ ਅਨਕ ਸਾਜ ਸੀਧਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਜਿਉ ਮ੍ਰਿਤਕ ਓਢਾਇਆ ਰਹਾਉ ਤਾਏ ਤਾਏ ਕਿਰਪਨ ਸ਼੍ਰਮ ਕੀਨੋ

0: पयो अनुग्रह
1: जाकाओ प्रभु को इस हृदय नाम
0: वसाया।
1: सार संगत का पाछा
0: परे
1: जान नानक
0: हर रस पाया।
1: पयो अनुग्रह
0: जाकाओ प्रभु को इस हृदय नाम
1: वसाया।
0: साध संगत का
1: पाछा परे
0: जान नानक हर रस पाया।
1: वाहिगुरु जी का खालसा
2: वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध सिंह जी सनेमल फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा।

और मुताला करेंगे किसी ने जीवन का लक्ष्य खाना पीना ही रखे है। ये एक साधन से लक्ष्य नहीं से किसी के जीवन का लक्ष्य परिवार है धन संपदा है। इस तो अगे अज तक मनुख दियां निगाहां नहीं गई, इतें ही रुकियां जाए इतें ही रुकियां। तो साहब कहने ये लक्ष्य नहीं है जीवन का, ये लक्ष्य नहीं है जीवन का, ये निशाना नहीं है जीवन का, ये घर नहीं है। जिहड़े जिहड़े लक्ष्य बनाए ने ये तो साधन ने, साधन लक्ष्य समझ ले तो कुदरती गल है जब साधन ही लक्ष्य हो गया फिर लक्ष्य से असल दे भुल जाएगा भुल जाएगा। तो लक्ष्य बने हुए लक्ष्य भुले हुए इसे वास्ते अवतारी पुरुष कहते ने याद करो किसनो लक्षणों। लक्ष्य की है परमात्मा, लक्ष्य की है ईश्वर, ये भूले हुए करीबन करीबन सारी कायनात नूं भूले हुए की होया। कोई करोड़ों विच एक अद मनुख नूं लक्ष्य का पता है, लक्ष्य की समझ है, बाकियां नूं नहीं है। जिस जिसनों भी लक्ष्य का बोध नहीं है, महाराज कहते ने उदा संसार ते आना व्यर्थ है, फिजूल फिजूल जी रहे है, व्यर्थ जी रहे है। इस तरह इस विचारधारा नो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ करते हैं। मैं अर्ज करना सार्थक है उस मनुख का जीवना जिन्हों लक्ष्य की समझ है तो जीवन लक्ष्य की तरफ जा रहे है। लक्ष्य की कोई समझ ही नहीं है कि जब समझ ही नहीं है तो फिर जीवन उस पासे नहीं जा सकता। चंगे चंगे जिन्हों असी सत्संगी कहने प्रेमी कहने नितनेमी कहने इन्हों के भी जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं है, नहीं है। इन्होंने भी साधन में ही लक्ष्य समझे हुए है कि किसी हद तक जो लक्ष्य परमात्मा है इन्हों साधन की तरह वरतते हैं कि हे प्रभु तू ए करी तू ए करी तू ए करी, यह नहीं कि हे प्रभु तू मिले। उसका मिल जाना सब कुछ का मिल जाना है, उसकी प्राप्ति सब कुछ की प्राप्ति है। ठीक कहता एक सूफी, सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कहता है जिस दिन का मैं रब नो मंगया हूं होर कुछ मंगना चंगा ही नहीं लगता। रब को लिखी मंगया मैं रब नो ही मंगया और कुछ नहीं मंगया। परमात्मा कोलों की मंगया परमात्मा कोलों परमात्मा ने ही मंगया। बड़ा स्याणा होवेगा सूझवान होवेगा तो ही स्याणा है, बाकी सब मूल ने जो परमात्मा कोलों होर होर पे मंग लेंदे ने पर परमात्मा नु नहीं मंगदे। ते जिहड़े होर होर मंगदे ने सब कहिंदे ने मम्मा मांगन हार इयाणा, ये सब इयाणे ने बच्चे ने नादान ने ना समझ ने। मम्मा मांगन हार इयाणा, इयाणे ने खिलौने ही मंगने ने। कई दफा खिलौणिया की ममता करके खिलौणिया की पकड़ करके मां नूं भी भुल जांदा प्यो नूं भी भुल जांदा। जरा वड्डा हो गया खिडौने वड्डे हो गए ने हुण परिवार करके निरंकार नूं ही भुल गए, हुण पदार्थां करके परमात्मा नूं

वाकई ईश्वर दा घर, गुरु दा घर, परम पुरख दा घर अगे ही हुंदा है। सुरत नूं अगे करिए, प्रभु नाल जुड़दी है, परमात्मा नाल जुड़दी है। सुरत नूं पिछे करिए, पदार्थां वल चली जांदी है, संसार वल चली जांदी है। इसे तरह ही लगन नाल पुछदे हुण ऐसे टिकाणे ते पहुंचे कि मंजिल तो मंजिल दा पता पुछ रहे ने, घर तो ही घर दा पता पुछ रहे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी मुस्कुरांदी जोत रस्ते च मिली। संजोग भला और स्वभावक संजोग। आप गुरु नानक तो पुछदे ने भी धन गुरु नानक तपा, कलयुग दे अवतारी पुरुष उन्हां दा घर किथे है? तो जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहण लगे, तू नानक तपे दे घर जाना है? हां, मैं नानक तपे दे घर जाना है। आ मैं ले चला। कहिंदे ने लगाम गुरु नानक ने पकड़ ली, घोड़ी ते बैठे ने लहणा जी, गुरु नानक ही अपने घर तक ले जा रहे ने लगाम पकड़ के। साखी है, प्रेरणा देंदी है, जिस दी लगाम गुरु नानक आप ना पकड़े मुश्किल है उसका गुरु नानक दे घर तक जाना। ते लगाम गुरु नानक उसे दी पकड़ेगा जो लहणे दी तरह तड़पे हिरदे नाल पुछे, नानक तपे दा घर किथे है, नानक तपा किथे रहिंदा है। जद पहुंचे टिकाणे ते तखत ते बैठी हुई जो जोत दिखाई दिती, ए ते ओही सी जिसने लगामा पकड़िया सन, ए ते ओही सी जो लेके आया इथे। कहिंदे भुब्बां निकल गईया, नेत्र अश्कवार होए, कदमां ते मस्तक रखिया निर्माणता दा और शीतल स्वभाव दा, शांतमई किरणा दा इतना असर होया, लहणा जी अपने आप नूं काबू च नहीं रख सके, फिर उस घर जोगा ही हो गए। भावें मत्ते दी सरां तो आपने आके वासा खंडूर साहब कीता होया सी, राज गर्दी दे कारण करके मत्ते दी सरां रहना आप लई कठिन हो गया सी, तो खंडूर साहब आके वसे सन। पर हुण गुरु नानक दे दर्शन करके करतारपुर जोगा हो गए, इत्थे ही रहण लग पए और हथ जोड़ के बेनती कीती पातशाह नूं, महाराज अपने कदमां विच मैनूं थां दिओ, मैं हुण इत्थे ही रहना है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस धार्मिक परंपरा नूं, इस रूहानी जोत नूं अगां तोरना चाहते सन। आप दी कल्पना विच, आप दी सोचनी विच जो मनुखता दा चेहरा सी, जो मनुखता दी अवस्था सी, उत्थे तक पहुंचाण लई अजे काफी समा दरकार सी और काफी सहयोग दरकार सी। आप अपने दूसरे घर दी तलाश दे सन, जिथे के अपनी जोत नूं टिकाया जा सके। उस समय सतगुरु तरह तरह दी प्रीख्या अपने बच्चियां दी ले रहे सन, बाबा श्री चंद दी, बाबा लक्ष्मी दास दी। एक दिन दी गल है, आप दे हथ विच बड़ा ही खूबसूरत लोटा सी, नाल संगी साथी सन, लैणा जी सन ते साहिबजादे भी सन, श्री चंद लक्ष्मी दास। आपने ए लोटा एक चिक्कड़ आलूद सरोवर दिच सुट दिता, जिस दिच पानी घट सी पर चिक्कड़ ज्यादा सी। श्री चंद नू आख्या, बेटा तू ए लोटा कढ के लिया। हथ जोड़ के श्री चंद अरजोई करन लगे, बापू कढ के ही लियाना सी, सुटिया क्यों है? आपने साडे सामने सुटिया है, ते फिर असी आप